दोस्तों आप ही मेरे साथ यानी आपके दोस्त के साथ प्रोग्राम सुबह सवेरे में। दोस्तों एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ पसीना बहाना नहीं होता बल्कि अपने शरीर के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना होता है। आज का मेरा सबसे बड़ा हेल्थ टिप पता है क्या है? वो है माइंडफुल वॉकिंग और सर्कैडियन रिदम यानी प्रकृति के चक्रधार चलना। सुबह जब आप वॉक पर निकले तो अपने कानों में हेडफोन मत लगाइए, अपने आसपास की चिड़ियों की चहचहाहट सुनिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए और हाँ अगर हो सके तो थोड़ी देर घास पर नंगे पैर चलिए जिसे हम अर्थिंग कहते हैं। यह आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को जमीन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और आपको पूरे दिन के लिए काम और हैप्पी बनाता है। इसके साथ ही अपनी सुबह की शुरुआत किसी कोल्ड ड्रिंक या सीधी चाय से करने के बजाय हल्का गुनगुना पानी पीकर करें। ये आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का सबसे आसान और असरदार तरीका है। सेहत की इन प्यारी बातों के साथ अब वक्त हो चला है हमारे आज के दूसरे गाने का। इसे सुनिए और अपनी सुबह को और भी यादगार बनाइए।

0: दोस्तों उम्मीद है आज के गाने और हमारे सेहत की बातें आपको पसंद आई होंगी। याद रखिए, एक सेहतमंद शरीर में ही एक खुशहाल दिमाग बसता है। अपने लिए रोज सुबह थोड़ा सा वक्त जरूर निकालिए। अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, हम फिर मिलेंगे थे किसी वक्त इसी स्टेशन पर लेकर आपका अपना शो सुबह सवेरे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए और सुनते रहिए हमारा प्रोग्राम। दोस्तों ये आकाशवाणी ईटानगर करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे अपतानी भाषा में समाचार।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अब आप सुन पाएंगे अपतानी श्रोताओं का कार्यक्रम।

दोस्तों आप सुन रहे थे या पता नहीं भाषा में समाचार या आकाशवाणी टानर करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो गुड मॉर्निंग अरुणाचल, अपनी गरम गरम चाय की चुस्की लीजिए और तैयार हो जाइए क्योंकि शुरू हो चुका है आपका फेवरेट मॉर्निंग इंफरटेनमेंट आवर। आज तारीख है 24 जुलाई 2026। आज के शो में हम पहले जाएंगे वक्त के पीछे और देखेंगे कि आज के दिन दुनिया भर और हमारे प्यारे भारत में क्या कुछ बड़ा हुआ था, और उसके बाद बात करेंगे हमारे अरुणाचल प्रदेश के आज के ताजा और बड़े हेडलाइंस की पूरी डिटेल में। लेकिन इससे पहले कि हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटे, चलिए सुबह की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं ग्लोबल हिस्ट्री पर। 24 जुलाई का दिन दुनिया भर के लिए बहुत ही हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट रहा है। आज के दिन की बड़ी बातें ये है, पेरुवियन एंडीज के गहरे पहाड़ों में अमेरिकन एक्सप्लोरर हिराम बिंगम को वहां के लोकल्स ने एक ऐसी जगह दिखाई जो दुनिया भूल चुकी थी, 15th सेंचुरी का एक शानदार इनकैन सिटी रूइंस। इस खोज ने एंशियन साउथ अमेरिकन सिविलाइजेशन को देखने का दुनिया का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। 1959 द फेमस किचन डिबेट। कोल्ड वॉर के दौरान यूएस के वाइस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और सोवियत यूनियन के प्रीमियर निकिता क्रुश्चेव के बीच एक बिना तय किए हुए बहुत ही हीटेड आर्ग्यूमेंट हो गई। दोस्तों मजेदार बात यह थी कि ये डिबेट मॉस्को में एक मॉडल अमेरिकन किचन के सामने हो रही थी, जहां दोनों देशों के नेता कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म की ताकत पर आमने सामने लड़ रहे थे। 1969 अपोलो 11 की सुरक्षित वापसी। चांद पर पहली बार इंसान के कदम रखने के बाद अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट पैसिफिक ओशन में बिल्कुल सेफ स्प्लैश डाउन कर गया। नील आर्मस्ट्रांग, बज़ ऑल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस पूरी दुनिया के हीरोज बनकर धरती पर वापस लौटे। 2013 सांटियागो दी कंपोस्टेला ट्रेन हादसा। स्पेन में एक बहुत ही दर्दनाक ट्रेन ड्यूरेलमेंट हादसा हुआ था।

जहां एक हाई स्पीड ट्रेन अपनी स्पीड लिमिट से लगभग डबल स्पीड पर एक शार्प कर्व पर मुड़ते हुए पटरी से उतर गई थी। ये मॉडर्न यूरोपियन हिस्ट्री के सबसे बड़े रेल डिजास्टर में से एक था। दुनिया का इतिहास हमें सिखाता है कि हमने कितना लंबा सफर तय किया है। चलिए एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक लेते हैं और फिर बात करेंगे हमारे भारत के इतिहास की।

आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट आवर में। चलिए अब रुख करते हैं हमारे देश भारत की तरफ। 24 जुलाई हमारे देश के सफर में बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया है। देखते हैं हमारे देश के बड़े माइलस्टोन। 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत। आज ही के दिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉ मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में एक ऐसी हिस्टोरिक यूनियन बजट पेश की जिसमें लाइसेंस राज को खत्म कर दिया गया। इस एक कदम ने इंडिया के मार्केट्स को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया और आज जो हम इकोनॉमिक बूम देख रहे हैं उसकी नींव इसी दिन रखी गई थी। कारगिल के मोर्चे से 24 जुलाई 1999 को बहुत बड़ी खबर आई थी कि जब इंडियन आर्म फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय के तहत लगभग सभी स्ट्रेटेजिक पिक्स पर फिर से अपना कब्जा जमा लिया था और इसके ठीक दो दिन बाद देश ने पूरी तरह से अपनी जीत का ऐलान किया था। 2007 देश को मिली पहली महिला राष्ट्रपति। न्यू दिल्ली में प्रतिभा देवी सिंह पटेल ने भारत की 12th प्रेसिडेंट के रूप में ओथ ली। यह हमारे देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा पल था क्योंकि वो देश के सबसे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पर बैठने वाली पहली महिला बनी। 1937 प्री इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आज ही के दिन आजादी से पहले हमारे देश के प्योनर इंडस्ट्रियलिस्ट ने ब्रिटिश राज के दौरान ही भारत को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए बड़े इंडस्ट्रियल स्टेप्स लिए थे जिसने आजाद भारत की बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बेस बनाया। अपने देश का इतिहास सच में प्रेरणा से भरा है। अब वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का। चलिए खोलते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश की आज की ये यानी 24 जुलाई 2026 के न्यूज़पेपर और देखते हैं हेडलाइंस की पूरी डिटेल। 200 दी अरुणाचल टाइम्स की पहले हेडलाइंस है। पीडब्ल्यूडी अवेटिंग फ्रेश सैंक्शन फॉर पैकेज बी ऑफ ईटानगर टू बंडटेवा हाईवे। सबसे पहली बड़ी खबर ईटानगर टू नाहरलगन स्ट्रेच पर सफर करने वाले लोगों के लिए है। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अभी स्टैंड बाय पर है क्योंकि उन्हें ईटानगर से बंडटेवा हाईवे प्रोजेक्ट के पैकेज बी के लिए नए फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन के इंतजार है। सैंक्शन के मिलते ही हाईवे का काम पूरी रफ्तार से दोबारा शुरू किया जाएगा ताकि आम जनता को ट्रैफिक और खराब सड़क से जल्द राहत मिल सके। अपसू एक्सटेंड सॉलिडरिटी टू नीड प्रोटेस्टर और जो सेंटर टू चूज डायलॉग ओवर फोर्सेस। अगली खबर स्टूडेंट्स के मुद्दे से जुड़ी है और अरुणाचल स्टूडेंट्स यूनियन ने न्यू दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे नीट एग्जाम इरेगुलरिटीज के लिए के बड़े प्रोटेस्ट को अपना पूरा सपोर्ट दिया है। आपसू ने 20 जुलाई के चलो संसद मार्च के दौरान हुए पुलिस लाठी चार्ज की कड़ी निंदा की है। आपसू प्रेसिडेंट विजय ताकू ने कहा कि जो स्टूडेंट्स फेयर एग्जाम सिस्टम मांग रहे हैं वो देश के दुश्मन नहीं है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स यूज करने के बजाय उनसे सीधी बात करनी चाहिए।

दोस्तों एक बड़े लीगल अपडेट में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक डोमेस्टिक हेल्पर के मिस्टीरियस डेथ के केस में अपनी थरो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। इन केस को लेकर लोकल एरियाज में काफी टेंशन थी और अब जब देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इसमें आगे आई तो लोगों को उम्मीद है कि सच जल्द ही सामने आएगा और पीड़ित फैमिली को पूरा जस्टिस मिलेगा। अगर स्टेट पॉलिटिक्स की बात करें तो ईटानगर के एनएच 415 पर थोड़ी सियासी गर्मी देखने को मिली। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बीजेपी वर्कर्स द्वारा उनके हेडक्वार्टर्स राजीव गांधी भवन के ठीक सामने किए गए प्रोटेस्ट की कड़ी निंदा की है। एपीसीसी जनरल सेक्रेटरी चेरा ताया ने इस प्रोटेस्ट को अनडेमोक्रेटिक और अनऑथराइज बताया और कहा कि बीजेपी नीत के बड़े मुद्दे से लोगों को ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। और आखिरी बड़ी खबर ये है, स्टेट की एग्रीकल्चर और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर गैब्रियल डी वांगसू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि सरकार और देश के स्टूडेंट्स दोनों ही नीत के मुद्दे पर एक साफ और कंस्ट्रक्टिव डिबेट चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और अपोजिशन पर सीधा निशाना साधा कि लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और बाकी नेता मुद्दे को सुलझाने के बजाय जानबूझकर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि सिर्फ सियासी फायदा उठा सके। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे अरुणाचल प्रदेश के सबसे बड़े समाचार और हिस्ट्री के रोचक किस्से। कहीं मत जाएगा क्योंकि आगे ढेर दिन भर आपका फेवरेट स्टेशन पर आपको बेहतरीन गानों और अपडेट्स के साथ कंपनी देता रहेगा। दोस्तों ये आकाशवाणी ट्रैनर कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। कहीं मत जाएगा क्योंकि आप सुन पाएंगे तागिन भाषा में समाचार।

दोस्तों आप सुन रहे थे तागिन भाषा में समाचार या आकाशवाणी ईटानगर कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। चलिए दागिन न्यूज के बाद अब वक्त हो चला है आपके दिन को थोड़ा सुहाना और म्यूजिकल बनाने का। शुरू हो चुका है आपका अपना प्रोग्राम सदाबहार। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू और आज इस खूबसूरत सुबह में हम गुनगुनाएंगे गुजरे जमाने के वो हसीन गीत जो सीधे दिल को छू लेते हैं। आज तारीख है फ्राइडे 24 जुलाई और मौसम के मिजाज को देखते हुए आज का हमारा ये म्यूजिक एक का सफर और भी स्पेशल होने वाला है।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं सदाबहार। वैसे गाना सुनकर दिल खुशी हो गया ना। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हम सबकी लाइफ को डेली इफेक्ट करती है, यानी हमारा मौसम। सबसे पहले बात करते हैं हमारे कैपिटल सिटी ईटानगर की। अगर हम आईएमडी ईटानगर की रिपोर्ट्स के देखें तो आज हमारे कैपिटल में आसमान पर घने बादल छाए रहेंगे। आज का मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 29 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास टच करेगा, तो गर्मी से थोड़ी राहत जरूरी है। लेकिन हाँ, आईएमडी ने अलर्ट दिया है कि आज आइसोलेटेड प्लेसेस पर थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग के साथ हल्की सी मध्यम बारिश होने की पूरी चांसेस है। तो अगर आप ऑफिस या किसी काम से बाहर निकल रहे हैं तो अपनी गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाइए और अम्ब्रेला या रेनकोट साथ रखना बिल्कुल मत भूलिए। वैसे मौसम पर मुझे एक बात याद आई। पता है दोस्तों, बचपन में जब ऐसी बादल वाली सुबह होती थी ना, तो सबसे पहले उम्मीद ये होती थी कि स्कूल की छुट्टी हो जाए, और जब छुट्टी नहीं मिलती थी तो बस यही ध्यान रहता था कि घर कब वापस जाकर गरम गरम पकौड़े और चाय मिलेंगे। मौसम बदलता है तो हमारी यादें भी ताजा हो जाती है। चलिए इसी नॉस्टैल्जिक मूड के साथ सुनते हैं हमारा दूसरा पुराना गीत। ये गाना आपको पुरानी यादों की गलियों में ले जाएगा।
1: मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

दोस्तों अभी हमने ईटानगर की बात की पर चलिए थोड़ा रुख करते हैं हमारी बाकी डिस्ट्रिक्ट और ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश की तरफ। आईएमडी के पूरे स्टेट के वेदर समरी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में हमारे स्टेट में टेम्परेचर्स अबव नॉर्मल चल रहे थे पर अब मॉनसून कंडीशन फिर से एक्टिव हो रही है। आज 24 जुलाई को पूर्व से लेकर पश्चिम तक लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट जैसे ईस्ट कमिंग वेस्ट सियांग और अंजाव के आइसोलेटेड इलाकों में आईएमडी ने थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का वार्निंग अलर्ट जारी किया है। कुछ जगहों पर अचानक तेज बौछारे के साथ थंडरस्टॉर्म आ सकता है, इसीलिए पहाड़ी रास्तों पर ट्रैवल करते वक्त एक्स्ट्रा अलर्ट रहिएगा क्योंकि मॉनसून में हम सब जानते हैं कि लैंडस्लाइड का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। 26 जुलाई के स्टेट में बारिश और ज्यादा पहने वाली है। पता है दोस्तों, लोग अक्सर पूछते हैं कि सबसे बेस्ट मौसम कौन सा होता है। मेरा मानना है कि मौसम कोई भी हो, अगर आपके दिल में सुकून है और कानों में अच्छे गाने चल रहे हैं तो हर मौसम सदाबहार बन जाता है। बारिश की जो बूंदें जब हमारी पहाड़ियों पर गिरती है तो हमारे अरुणाचल और भी खूबसूरत लगने लगता है। बस आप सब सुरक्षित रहिए और इस मौसम का मजा लीजिए। चलिए इस खूबसूरत वेदर अपडेट के बाद अब वक्त हो चला है हमारे आखिरी गाने का, एक और ऐसे दिन जो आपके चेहरे पर स्माइल ले जाएंगे। दोस्तों ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी?
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के?
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य
3: घर। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया। आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए।
5: पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है, लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: वहीं दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है।
2: दिल्ली की राउत एवेन्यू अदालत में लोक परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए एक विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय की अधिसूचना के अनुसार यह अदालत लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 और उससे जुड़े अन्य मामलों की सुनवाई करेगी। यह अधिसूचना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा में पेपर लीक के मामलों में शामिल लोगों को शीघ्र और कड़ी सजा सुनिश्चित करने के लिए देशभर में फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद जारी की गई। रोहन, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों से जारी अनशन समाप्त कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसद भी वहां पहुंचे और पत्र लिखकर अनशन समाप्त करने का आग्रह किया था। श्री वांगचुक ने कहा कि उन्होंने विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद अनशन समाप्त किया है। उन्होंने सभी से किसी भी प्रकार की हिंसा न होने देने के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया। श्री वांगचुक 28 जून से शिक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक मामले में जवाबदेही की मांग को लेकर अनशन पर थे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा और खेलों के क्षेत्र में सहयोग के लिए 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों पर कल बुखारेस्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डान के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद हस्ताक्षर किए गए। एक रिपोर्ट।
2: प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और रोमानिया के बीच 7 दशकों से ज्यादा से गहरा और मजबूत संबंध रहा है, जो आपसी भरोसे, सम्मान और लोगों के बीच मजबूत रिश्तों पर टिकी है। उन्होंने कहा कि भारत और रोमानिया विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल, स्वास्थ्य सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, कृषि उत्पादन, उर्वरक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। बुखारेस्ट रोमानिया से शुभाश्री महापात्रा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सचिवों की नियुक्ति की है। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी को पंचायती राज मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। नरेश पाल गंगवार नए उच्च शिक्षा सचिव होंगे। टीके अनिल कुमार स्कूली शिक्षा और साक्षरता सचिव होंगे। भारत ने 350 किलोग्राम के थ्रस्ट श्रेणी का अपना पहला स्वदेशी डिस्पोजेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के गैस टरबाइन अनुसंधान प्रतिष्ठान GTRE ने विकसित किया है। एक रिपोर्ट।
3: रक्षा मंत्रालय ने कहा कि DRDO के डिजाइन पर आधारित इस जटिल प्रणाली की डिलीवरी भारतीय रक्षा उद्योग की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दर्शाती है। ये वर्षों की सटीक इंजीनियरिंग, उन्नत विनिर्माण और भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक समुदाय के बीच घनिष्ठ साझेदारी का परिणाम है। मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि जेट इंजन प्रौद्योगिकी को विश्व के सबसे परिष्कृत इंजीनियरिंग विषयों में से एक माना जाता है। इस इंजन को बुधवार को आजाद इंजीनियरिंग द्वारा सफलतापूर्वक विकसित किया गया और GTRI को सौंपा गया। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: DRDO ने आज ओडिशा तट के निकट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली कुशा मिसाइल का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए DRDO और संबंधित पक्षों को बधाई दी है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी।
4: पुरी के पवित्र शहर गहरी भक्ति और आध्यात्मिक उत्साह से भर गया है। लाखों भक्त भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की घर वापसी की बाहुड़ा यात्रा को देखने के लिए इकट्ठा हुए हैं। पारंपरिक वाद्य यंत्र की ताल के बीच देवताओं के पहंडी जुलूस से समारोह पूर्वक ले जाया जाएगा और उनके शानदार रथों पर विराजमान किया जाएगा। यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसिमा मंदिर में रुकेगा, जहां भगवान को ओड़ो पिठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश आकाशवाणी समाचार।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहेन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगे लहराते हुए स्पोर्ट्स एरेना में प्रवेश किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
3: धन्यवाद विशाल। पेपर लीक की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा आज के अधिकांश अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान ने प्रधानमंत्री के शब्दों को दिया है पेपर लीक पर कड़ा कानून बनेगा, आज कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा मसौदा। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त करने को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है वांगचुक ने आधी रात तोड़ा अनशन, केंद्रीय मंत्रियों ने जूस पिलाकर तोड़वाया अनशन। वहीं आंदोलनकारी छात्रों और सरकार के बीच बातचीत पर नवभारत टाइम्स का कहना है वेन्यू पर अटकी सरकार से वार्ता। अमर उजाला की सुर्खी है यूपीएससी की तरह एनटीए परीक्षाएं होंगी फुल प्रूफ, शुरू हुए बड़े बदलाव, गड़बड़ी पर नपेंगे अधिकारी, ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम की भी होगी समीक्षा। परीक्षा सुधार जरूरी शीर्षक से हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ छात्रों का आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन परीक्षा सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा को साकार करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ परीक्षा तंत्र से जुड़े लोगों की भी होनी चाहिए। 2 साल के अंतर की शर्त लगाकर नहीं रोक सकते मातृत्व अवकाश, सरकारी कर्मियों के मातृत्व अवकाश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की टिप्पणी दैनिक जागरण में है। न्यायालय ने कहा पहले और दूसरे बच्चे के बीच 2 वर्ष का अंतर होने की शर्त लगाकर मातृत्व अवकाश देने से नहीं किया जा सकता इनकार। आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने वालों को नतीजे भुगतने होंगे, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर का ये बयान जनसत्ता में है। फिलीपींस के मनीला में 33वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की बैठक में विदेश मंत्री ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग सुरक्षित और निर्बाध से खुले रहने चाहिए।
2: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक की घटनाएं रोकने के लिए नया कानून लाने का वादा किया, आज मंत्रिमंडल की बैठक में कड़े प्रावधान लाए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने पेपर लीक मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में अनशन समाप्त किया। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता वाला अपना पहला एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया। भारत और रोमानिया ने विज्ञान और टेक्नोलॉजी, शिक्षा तथा खेल के क्षेत्रों में 3 समझौतों पर हस्ताक्षर किए और 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का स्कॉटलैंड के ग्लासगो में रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi promises new law to tackle paper leaks. Today's cabinet meeting to come out with stricter measures to deal with the issue. Delhi High Court sets up special fast-track court for paper leak cases after PM Modi's announcement. Activist Sonam Wangchuk ends his hunger strike in presence of Union Ministers JP Nadda and Jitendra Singh. India develops its first expendable turbojet engine of 350 kilograms thrust class. India and Romania sign 3 agreements in the fields of science and technology, education and sports. And 23rd Commonwealth Games begin in Glasgow, Scotland with spectacular and colourful opening ceremony. Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft includes provisions for fast-track courts and stringent punishment will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said, as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
5: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे. विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया. फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी. कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा.
4: The Prime Minister said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
5: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है. और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं,

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे दिल्ली और शिलोंग के इंटरेस्ट से समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का रन FM 103.1 MHz से हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। अपनी मॉर्निंग कॉफी या चाय का मग उठाइए और थोड़ा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि वक्त हो चला है आपके सबसे इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग प्रोग्राम का, हेलो ईटानगर। मैं हूं आपकी दोस्त और होर्स RJ याजू, और हर बार की तरह आज भी हम ऐसी बातें करेंगे जो हमारी नॉलेज को बढ़ाएं और हमें लाइफ में आगे बढ़ने की एक नई एनर्जी दे। आज तारीख है 24 जुलाई 2026, और पता है आज का दिन पूरी दुनिया के लिए क्यों स्पेशल है? क्योंकि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एमिलिया अर्नहार्ट डे। ये दिन एक ऐसी एडवेंचरस महिला के नाम है जिसने आसमान की ऊंचाइयों में उड़कर पूरी दुनिया के सामने डिटर्मिनेशन की एक नई मिसाल खड़ी की थी। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी इस हैरतअंगेज कहानी के गहराइयों में उतरे, चलिए सुबह को थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं इस पहले शानदार ट्रैक के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं हेलो ईटानगर। आज हम बात कर रहे हैं ग्लोबल एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डेयरिंग पायलट एमिलिया ईयरहार्ट की, जिनका जन्म आज ही के दिन यानी 24 जुलाई 1897 को अमेरिका में हुआ था। चलिए थोड़ा हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं और कुछ सीखते हैं। ये उस दौरान की बात है जब लोग सोचते थे कि हवाई जहाज उड़ाना सिर्फ मर्दों का काम है, लेकिन एमिलिया ने इस सीलिंग को तोड़ने का फैसला लिया। 1932 में उन्होंने अकेले, मैं फिर से कहूंगा अकेले, अटलांटिक ओशन का के ऊपर से प्लेन उड़ाकर एक नॉनस्टॉप फ्लाइट पूरी की। ऐसा करने वाली वो दुनिया की पहली महिला बनी। उन्होंने सिर्फ फ्लाइट नहीं उड़ाई, बल्कि उन्होंने उस पुरानी सोच को भी हवा में उड़ा दिया जो कहती थी कि महिलाएं इतना बड़ा जोखिम नहीं उठा सकती। मुझे पर्सनल लेवल पर उनकी एक बात बहुत छू जाती है। एमिलिया हमेशा कहती थी, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज द डिसीजन टू एक्ट, द रेस्ट इज मियरली टेनेसिटी। यानी सबसे मुश्किल काम होता है पहला कदम उठाने का फैसला करना, उसके बाद तो बस आपकी जिद काम आती है। जब हम अपने अरुणाचल के पहाड़ों को देखते हैं, ये या जब हम कोई नया बिजनेस या पढ़ाई शुरू करते हैं, तो सबसे ज्यादा डर उस पहले स्टेप में लगता है। एमिलिया की लाइफ हमें सिखाती है कि उस डर के आगे निकलना कितना जरूरी है। चलिए इस सीख के साथ एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक लेते हैं और इसके बाद बात करेंगे उनकी उस आखिरी मिस्ट्री की जिसने दुनिया को आज तक हैरान किया हुआ है।

0: Click on the bell icon.
1: दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हेलो ईटानगर के इस एजुकेशनल सेगमेंट में। दोस्तों एमेलिया ईयरहार्ट की लाइफ की जितनी इंस्पायरिंग थी उनका आखिरी सफर उतना ही मिस्टीरियस रहा। साल 1937 में उन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बनाने का सोचा। अपने ट्विन इंजन लॉकहीड इलेक्ट्रो प्लेन से पूरी धरती का चक्कर लगाने का, यानी सरकम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब। लेकिन अफसोस, जब उनका सफर लगभग 35,000 किलोमीटर पूरा हो चुका था और थोड़ा ही हिस्सा बचा था, तब पैसिफिक ओशन के हाउलैंड आइलैंड के पास उनका प्लेन अचानक गायब हो गया। बहुत बड़े सर्च ऑपरेशन चलाया गया पर उनका या उनके प्लेन का कोई निशान नहीं मिला। आज तक ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्टीरियस में से एक है। लेकिन दोस्तों उनका गायब होना उनकी पहचान नहीं बना, उनकी पहचान बनी उनकी करेज। एमेलिया ईयरहार्ट दे हमें याद दिलाता है कि एक्सप्लोरेशन और विमेन अचीवमेंट्स किसी एक देश या दौर तक लिमिटेड नहीं है। आज जब हम हमारे देश में, हमारे स्टेट अरुणाचल में लड़कियों को फाइटर जेट्स उड़ाते हुए देखेंगे या कॉरपोरेट कंपनीज लीड करते हुए देखेंगे, तो उसकी नींव कहीं ना कहीं एमेलिया जैसे पियोनर्स ने ही रखी है। सोचिएगा जरूर, ऐसा कौन सा डर है जो आपको आपकी ऊंची उड़ान बढ़ने से रोक रहा है, क्योंकि आसमान तो सबके लिए खुला है। चलिए इसी खूबसूरत थॉट के साथ सुनते हैं हमारा आज का आखिरी गाना, फिर आते हैं शो के रिपब्लिक।

दोस्तों, ये तो हेलो ईटानगर। उम्मीद है आपने इस सेगमेंट को एंजॉय किया होगा। ये आकाशवाणी ईटानगर करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे, विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी, कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता भी अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस प्राप्त करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशोर डन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदयान और चैंबर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिंदेनु से मुलाकात करेंगी। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। इस बीच गुजरात में पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन ठप है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: भारी वर्षा के कारण दक्षिण गुजरात में स्थानिक नदियां और जूझ तथा केलिया सहित कई बांध उफान पर है, जिससे नवसारी, वलसाड और सूरत में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई है। प्रभावित जिलों में व्यापक राहत और बचाव अभियान जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रभावित क्षेत्रों से हजारों फंसे हुए नागरिकों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में पहुँचाया गया है। अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित राज्य के अधिकतर जिलों में आज सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। राज्य प्रशासन ने नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही विश्वास करने की अपील की है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडिचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा सम्पन्न होगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वजवाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशालवाहक लवलीना बोरगोहिन के नेतृत्व में भारतीय दल ने लघु तिरंगे लहराते हुए स्पॉट से एरेना में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. Prime Minister Narendra Modi has said that over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. In a video message last night, Mr. Modi said, government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year and it was essential to conduct the examinations immediately.
1: लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया।
3: The Prime Minister said yesterday he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts. He said the departments worked continuously and submitted the draft to him late last night. Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest. Delhi High Court has constituted a new fast-track court with immediate effect to hear the cases under the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. In a notification, the High Court said the court of Officer Anu Grover Balega at the Rouse Avenue Court will function as a specially designated fast-track court to hear cases under the Public Examinations Act along with the connected offences. The notification came hours after Prime Minister Narendra Modi announced that the centre had decided to establish fast-track court to ensure swift and stringent punishment for those involved in examination paper leaks. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. He urged everyone to stay very vigilant about not allowing violence of any kind anywhere. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi police DCP Sumit Jha said that these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and the youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them.
4: We noticed that some attempts are being made to spread misinformation on social media. So far, more than 400 Pakistani social media handles have been identified, which are taking advantage of this situation and spreading fake content and rumors. They are being blocked. I appeal to you that for the safety of children, do not get provoked by any fake post, edited videos or any post made by anonymous handle.
5: Edited videos ya anonymous handle se kiya hua koi bhi post ke bhadkave mein na aaye.
3: Delhi Metro Rail Corporation, DMRC, has announced the closure of 17 metro stations with effect from 7:30 a.m. today until further notice due to security reasons in the national capital. These stations include Lok Kalyan Marg, Rajiv Chowk, Patel Chowk, RK Ashram Marg, Barakamba Road, Mandi House, Central Secretariat, ITO and others. However, the interchange facilities will continue to be available at Rajiv Chowk, Mandi House and Central Secretariat. The 23rd Commonwealth Games CWG began in Glasgow, Scotland with a spectacular and colourful opening ceremony. The Indian contingent led by flag bearer Mirabai Chanu and ceremonial baton bearer Lovlina Borgohain marched with athletes waving miniature tricolours. And that is the end of this news bulletin.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार ये आकाशवाणी ईटानगर कारण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, अपने साथ एक कड़क चाय की प्याली रखिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब शुरू होने जा रहा है आपका सबसे फेवरेट और सबसे मसालेदार और बिल्कुल ताजा प्रोग्राम फिल्मी गपशप। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू, और आज इस 24 जुलाई 2026 के सुहाने सुबह में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन बड़े धमाकों की जो इसी हफ्ते हुई है। हम बात करेंगे करंट बॉक्स ऑफिस की, बिल्कुल नए मूवी रिव्यूज की, और आज ही के ओटीटी पर आने वाली बड़ी फिल्म्स की। दोस्तों, बातें लंबी है और गॉसिप उससे भी ज्यादा, लेकिन इससे पहले कि हम पहली ब्रेकिंग न्यूज पर जाएं, चलिए मौसम को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं इस पहले ब्लॉकबस्टिंग गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं फिल्म मेकअप शॉप। आज की सबसे बड़ी, सबसे फ्रेश इंटरनेशनल खबर डायरेक्ट सैंडियागो यूएसए से आ रही है। नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायणा के ट्रेलर लॉन्च के लिए हमारे बॉलीवुड सुपरस्टार रणबीर कपूर और साउथ सेंसेशन यश कल रात सैंडियागो कॉमिक कॉन 2026 के रेड कार्पेट पर बिल्कुल देसी स्वैग में पहुंचे। रणबीर कपूर ने एक शानदार ब्लैक बंगाला पहना था जिसमें इंडियन फ्लैग का लैपल पिन लगाया हुआ बिल्कुल अलग ही चमक रहा था। और वही यश ब्लैक सूट के साथ एक गोल्डन त्रिशूल लैपल पिन में काफी धांसू लग रहे थे। इन दोनों को कॉमिक कॉन के बॉलरूम 20 में 4000 से ज्यादा लोगों के सामने फिल्म का एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने का मौका मिला। इंटरनेट पर इनकी पिक्स सुबह से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर तो जैसे तूफान आ गया है, क्योंकि आज ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका ट्रेलर ऑफिशियली ड्रॉप होने वाला है। दिवाली 2026 पर आने वाले इस फिल्म में रणबीर लो ड्रामा का और यश रावणा का रोल कर रहे हैं। क्या क्रेज है। चलिए इस बड़ी खबर के बाद सुनते हैं हमारा दूसरा गाना, फिर बात करेंगे इस हफ्ते के बड़े बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स की।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों, अगर हम इस हफ्ते के बॉक्स ऑफिस ट्रेंड पर नजर डालें तो जुलाई 2026 हिंदी सिनेमा के लिए सच में एक कमाल का रहा। मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल इस महीने की अब तक की सबसे बड़ी क्रॉसर बनकर उभरी है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर राजकुमार राव और वामिका गब्बी के फैंस के लिए आ रही है। उनके आने वाली कोर्ट रूम ड्रामा प्रहार, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उज्ज्वल निकम के लैंडमार्क केसेस पर बेस्ड है, पहले 7 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, पर मेकर्स ने इस हफ्ते बड़ा डिसीजन लेते हुए इसके रिलीज को आगे बढ़ा दिया है। वजह, अगस्त के महीने में स्पाइडरमैन की बड़ी रिलीज और बाकी बड़े बॉलीवुड क्लैशेस से बचना। मेकर्स का मानना है कि इस फिल्म को चलने के लिए एक क्लियर विंडो चाहिए, नई डेट का इंतजार है। चलिए इसी गपशप के बीच रुक करते हैं हमारे तीसरे गाने की तरफ।

0: मुझे सपने आने लगे, अनन्या मुझे राखी बांध रही। मैंने सोचा कि बात हाथ से निकल जाए, इसके पहले जाके मैं संभाल लेता हूँ। हमें साथ में पढ़ाई नहीं करनी चाहिए।
1: हाँ? अचानक क्या हुआ?
0: It's not you, it's me.
1: It's not you, it's me. क्या होता है? Please explain.
0: Relax. हमारा डिवोर्स नहीं हो रहा है। बस हम साथ में पढ़ाई नहीं कर सकते।
1: क्रिश!

दोस्तों बात करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी थिएटरिकल रिलीज की जिसका क्रेज पिछले दो दिनों से पूरे देश पर छाया हुआ है। सुपरस्टार विजय की आखिरी सिनेमेटिक राइड जाना नयागन, हिंदी डब में इसका नाम है जन नेता। डायरेक्टर एच विनोद की इस एक्शन ट्रेलर को लेकर पूरे देश में और हमारे ईटानगर के सिंगल स्क्रीन में भी भयानक क्रेज देखने को मिल रहा है। फिल्म के रिव्यू की बात करें तो क्रिटिक्स इसे एक प्रॉपर मास एंटरटेनर बोल रहे हैं। विजय सर की स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा की तरह इलेक्ट्रिफाइंग है और बॉबी देओल ने विलन के रूप में काफी शानदार काम किया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि फिल्म थोड़ी लंबी और ब्लोटेड है क्योंकि इसमें कमर्शियल एलिमेंट्स के साथ साथ उनकी रियल लाइफ पॉलिटिकल करियर का टच भी डाला गया है, पर फैंस के लिए ये उनके थलपति को एक बेहद इमोशनल और एक्शन पैक्ड गुड बाय है। पहले ही दिन इस फिल्म ने 31 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करके बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है। अगर आपने नहीं देखी तो इस वीकेंड का प्लान सेट है। चलिए विजय सर और बॉबी देओल के इस जलवे की बात सुनते हैं हमारा चौथा गाना।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अपना प्रोग्राम फिल्मी गपशप। अगर आप इस वीकेंड पर बैठकर चिल करना चाहते हैं तो आज जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी नई फिल्म्स और वेब सीरीज रिलीज हुई है। सबसे पहले बात करते हैं नेटफ्लिक्स की, जहां आज ही ड्रॉप हुई है विक्रांत मासे की न्यू रोमांस ड्रामा फिल्म मुसाफिर कैफे। इसमें उनके साथ वेदिका पिंटो और महिमा मखवाना भी है। ये एक बहुत ही प्यारी और इमोशनल कंटेम्प्रेरी लव स्टोरी है, तो अगर आपको थोड़ा डीप और स्लो बर्न रोमांस पसंद है तो नेटफ्लिक्स पर इसे जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए इस ओटीटी अपडेट के साथ

वेलकम बैक दोस्तों, ओटीटी की बातें अभी खत्म नहीं हुई है। आज नेटफ्लिक्स पर एक और दिलचस्प क्राइम कॉमेडी फिल्म आई है जिसका नाम है कॉन सिटी। ये कहानी है चार ऐसे शातिर कॉन आर्टिस्ट की जो कर्नाटका में एक होटल चलाते हैं और बाहर के लोगों के सामने एक बिल्कुल नॉर्मल फैमिली होने का नाटक करते हैं। सस्पेंस और हंसी का एक जबरदस्त मिक्स है ये। वही अगर आपको सीरियस और हैवी कंटेंट पसंद है तो सोनी लिव पर आज आई है टोविनो थॉमस की पीरियड ड्रामा पलिचट्टम्बी। ये फिल्म केरला के 1959 की आइकॉनिक लिबरेशन स्ट्रगल के बैकड्रॉप पर सेट है। एक आम इंसान की बदलती हुई आइडियोलॉजीज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, तो मैं आपको ये फिल्म सजेस्ट करना चाहूंगी। इन सभी अपडेट्स के बीच वक्त हो चला है हमारे अगले गीत का।

दोस्तों सोशल मीडिया पर इस हफ्ते एक और चीज बहुत वायरल हो रही है। बेटाउन के अंदर नए डायरेक्टर्स और स्टार किड्स के डेब्यू को लेकर काफी चर्चा है। अगले हफ्ते यानी 31 जुलाई को रिलीज होने वाली है फिल्म तेरा यार हूं मैं, जिसे मशहूर डायरेक्टर इंद्र कुमार के बेटे अमन इंद्र कुमार अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। इंद्र कुमार वही है जिन्होंने धमाल जैसे एवरग्रीन कॉमेडी फ्रेंचाइज बनाई है, तो देखना ये होगा कि क्या उनका बेटा भी वैसे ही कमाल कर पाता है या नहीं। चलिए इस हल्की फुल्की गपशप के बाद लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक।

तो दोस्तों, इस हफ्ते की फिल्मी दुनिया में प्रणवीर और यश का कॉमिक कौन लुकअप टॉप पर रहा। बॉक्स ऑफिस पर विजय की फिल्म का धूम मचाना जारी है और ओटीटी पर विक्रांत मासी की मुसाफिर कैफे आपके वीकेंड को सुहाना बनाने के लिए रेडी है। एंटरटेनमेंट का पूरा दोस्त तैयार है बस आपके लिए।

दोस्तों ये थी फिल्मी गपशप, उम्मीद है आपको मिला होगा एंटरटेनमेंट का परफेक्ट डोज। ये आकाशवाणी चैनल करुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों कहीं मत जाएगा, क्योंकि अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कल रात गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में केंद्रीय मंत्रियों जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की उपस्थिति में 26 दिनों की भूख हड़ताल समाप्त कर दी। श्री वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमू और लेह लद्दाख के शीर्ष निकाय के वरिष्ठ नेता अस्पताल में मौजूद थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर भूख हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपने सामान्य वजन को वापस समाप्त करें। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन पोस्टों का खंडन किया है जिनमें दावा किया गया है कि दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक छात्र की मौत हो गई और पुलिस ने छात्र की मां की शिकायत के बावजूद FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि दावा फर्जी है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से 17 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए हैं। इन स्टेशनों में लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री एली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। फिर रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसो डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगी और सीनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्द्रुयान और चैम्बर ऑफ डिप्टीज के अध्यक्ष सोनिन गिनरेनु से मुलाकात करेंगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई हैं। ईरान पर अमरीकी हमलों के तेज होने और यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में तेल टैंकरों पर हमले के बाद एक महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग खतरे में पड़ गया है। वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की कीमतों में कल 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में नेक और सदाचारी विचारों तथा कार्यों के महत्व पर बल दिया। सोशल मीडिया पर एक संस्कृत कथन साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि व्यक्ति अपने कार्यों, विचारों और वाणी के माध्यम से जिस बात का निरंतर अनुसरण करता है वही उसके कल्याण को निर्धारित करता है। ओडिशा के पवित्र तटीय शहर पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा का आयोजन होने जा रहा है जिसमें भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक की वापसी यात्रा कराई जाएगी। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली न्यूज बुलेटिन। अब वक्त हो चला है एक ऐसे सेगमेंट का जहां चाबी आपके हाथ में ही होती है। रेडियो की फ्रीक्वेंसी पर अब वक्त है एक अलग ही वाइब का। चलिए खोलते हैं आपका और हमारा सबसे फेवरेट पर्सनल काउंटर। इट्स टाइम फॉर रेडियो ऑन डिमांड। मैं हूं आपकी दोस्त और होर्स आरजे याजू और इस सुहाने फ्राइडे को आप सबकी चहेती फरमाइशों को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूं। अपने हाथ उठाइए, कॉल उठाइए और आपका पसंदीदा गाना डायरेक्ट हवा में ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं हमारी पहली ख्वाहिश पर जो आई है हमारी पड़ोसी राज्य से। हमारी पहली रिक्वेस्ट आई है बॉर्डर के उस पार से विश्वनाथ असम के हमारे एक बहुत ही प्यारे लिसनर्स की। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है लेट 90s और अर्ली 20s का वो पॉप एंथम जिसने हर शादी और पार्टी में धूम मचाई थी। तो विश्वनाथ के हमारे सभी दोस्तों के लिए और उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट पर चलिए प्ले करते हैं श्रेया घोषाल और उस्ताद सुल्तान खान साहब की आवाज में ये हसीन ट्रैक ले जा रे।

वैसे इस गाने को सुनते ही पुराने स्कूल और कॉलेज के दिनों की लंबी छुट्टियां और वो पॉप एल्बम का दौर याद आ जाता है। विश्वनाथ से हमारे जो लिसनर हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी सुबह में ये प्यारी सी नॉस्टैल्जिया डालने के लिए। उम्मीद है आप अपनी चाय के साथ इस ट्रैक को एंजॉय कर रहे होंगे। अब बढ़ते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट पर, जो कि एक बेहद स्पेशल और खूबसूरत फरमाइश है। ये रिक्वेस्ट हमें भेजी है हिगी बागरा से हमारे तेली लिसनर गुमेमई बागरा जी ने, और पता है उन्होंने ये गाना खुद के लिए नहीं बल्कि डेडिकेट किया है हमारे सबकी चहेती लेजेंडरी सिंगर और अरुणाचल प्रदेश की मोपिन क्वीन मिस कार्चो मैडम को। कार्चो मैडम, सबसे पहले तो हेलो ईटानगर और हमारे पूरे रेडियो स्टेशन की तरफ से आपको हमारा बहुत बहुत प्रणाम। आपकी आवाज और आपका मोपिन के गीत हमारे स्टेट की शान है, और गुमे जी क्या शानदार चॉइस की है आपकी। आशा भोसले जी का गाया हुआ ये सेमी क्लासिकल सल्ट्री मास्टरपीस जलता है बदन, सच में आपकी म्यूजिकल समझ की तारीफ करनी पड़ेगी। कार्चो मैडम जैसे लेजेंड को इतना बेहतरीन गाना डेडिकेट करना ही अपने आप में एक अलग ही बात है। तो कार्चो मैडम के सम्मान में और गुमे जी की फरमाइश पर हिगी बागरा से डायरेक्ट आप सभी के लिए पेश है ये आइकॉनिक क्लासिक।

Attention, Pari Hydropower Station under operation. जब भी आप ऐसे सायरन की आवाज सुने तो तुरंत नदी और नदी के रास्ते से हट जाए। कभी भी इसी समय पे नदी पार ना करे और ना ही उसमें तैरने की कोशिश करे। नदियों के बीच जाकर क्वेरी इकट्ठा ना करे। वाहनों को नदियों के रास्ते पार्क ना करे और ना ही उसमें धोने जाए। फिशिंग या पिकनिक जैसे किसी भी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन ना करे। नदी छोटी होने के बाद नदियों के रास्ते वाहन पार ना करे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, सावधान रहे और सुरक्षित रहे। सार्वजनिक जागरूकता और सुरक्षा के लिए पारे हाइड्रो पावर स्टेशन द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगी। इस गाने जलता है बदन को आशा भोसले नहीं लता दीदी ने गाया था। लता दीदी की आवाज और आरती बर्मन साहब का म्यूजिक है। ये गाना जब भी चलता है ऐसा लगता है कि मौसम में थोड़ी और राहत अचानक घुल गई हो। कार्शु मैडम, उम्मीद है हमारे स्टेशन के जरिए पहुंचे इस म्यूजिकल बुके ने आपके चेहरे पर एक प्यारे से स्माइल लाई होगी। गुमे जी, थैंक यू सो मच इस बेहतरीन चॉइस के लिए। चलिए दोस्तों, रेडियो पर दोस्ती का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश आई है हमारी डेली लिसनर एक शानदार ट्रायो, रोमेश, रूनू और लकी फ्रॉम गोलाघाट आसाम। ये तीनों दोस्त हमेशा साथ हैं, साथ में हमारा शो सुनते हैं और आज उन्होंने एक बहुत ही आइकॉनिक पुराना गीत डेडिकेट किया है अपने बाकी सारे दोस्तों को। दोस्ती का रिश्ता ही ऐसा होता है दोस्तों, जहां दोस्त ही परिवार बन जाते हैं। गोलाघाट के हमारे इन तीनों यारों के लिए और उनके सभी दोस्तों के नाम चलिए प्ले करते हैं प्यार हमारा अमर रहेगा।

वैसे मानना पड़ेगा दोस्तों, क्या खूबसूरत लाइन है इस गाने की। रोमेश, रूनू और लकी, आप तीनों की ये दोस्ती भी इस गाने की तरह हमेशा अमर रहे और यूं ही बने रहे। हमारे शो पर अपनी यारी का रंग बिखेरने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, पुराने गानों का नशा ही कुछ अलग होता है। हमारी अगली मैसेज आई है हितेंद्र दास फ्रॉम असम से। उन्होंने हमसे एक ऐसा गाना रिक्वेस्ट किया है जो 90s के दौरान हर आशिक की जुबान पर हुआ करता था। हितेंद्र, आपकी चॉइस बड़े ही सुनहरे दौर की याद दिलाती है जब गानों के लिरिक्स सीधे दिल पर असर करते थे। तो हितेंद्र के स्पेशल डिमांड पर उनके और आप सभी लिसनर्स के लिए पेश है फिल्म राजा का ये बेहतरीन गाना, फूल मांगो ना बाहर मांगो।

हितेंद्र जी, उम्मीद है आपको अपनी फरमाइश सुनकर बेहद खुशी हुई होगी। ऐसे ही अच्छे गाने रिक्वेस्ट हमें भेजते रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब शो में थोड़ा मॉडर्न टच लेकर आते हैं। अगली रिक्वेस्ट हमें भेजी है रानी फ्रॉम असम ने। उन्होंने हमसे अरिजीत सिंह का एक बेहद ही प्यारा और हिट ट्रैक रिक्वेस्ट किया है, जो आजकल हर प्लेलिस्ट में टॉप पर रहता है। रानी, आपका हमारे स्टेशन पर बहुत बहुत स्वागत है और इस बेहतरीन सॉन्ग को चुनने के लिए थैंक यू सो मच। तो रानी की फरमाइश पर पेश है अरिजीत सिंह की आवाज में ये ट्रैक रांझना।

वैसे दोस्तों कहना पड़ेगा, अरिजीत सिंह की आवाज में जो सुकून है उसका कोई मुकाबला नहीं है। रानी उम्मीद है आपको अपना पसंदीदा गाना सुनकर अच्छा लगा होगा। दोस्तों वक्त हो चला है हमारे आज की अगली फरमाइश का, और ये रिक्वेस्ट आई है विमल बासुमतारी फ्रॉम जोनाई दिमाजी से। विमल हमारे डेली लिसनर है और विमल ने दोस्ती के इस पूरे माहौल को परफेक्ट एंडिंग देने के लिए सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का एक सुपरहिट एंथम मांगा है। तो विमल की फरमाइश पर दोस्ती का सबसे बड़ा गाना आया मौसम दोस्ती का।

तो दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है हमारे आज के इस अमेजिंग म्यूजिकल सफर को यहीं पर रैप अप करने का। विश्वनाथ से लेकर हिकी बागरा और गोलाघाट से लेकर जनाई तक आप सभी दोस्तों ने अपनी बेहतरीन फरमाइशों से हमारे इस प्रोग्राम को सच में सुहाना बना दिया है। आप सभी श्रोताओं को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन एवरग्रीन गानों की यादों को ताजा करने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अच्छे गाने सुनते रहिए और इस शानदार फायरे को पूरी एनर्जी के साथ एंजॉय कीजिए। मैं लेती हूं आपसे विदा। हैव अ वंडरफुल सेफ एंड ब्यूटीफुल वीकेंड अहेड। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक पी दोले और तकनीकी अभियंता बी बोरवा। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला अभी हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा। अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे नानस के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है और सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।
1: तो सुनिए, सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
2: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों के चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचो को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने श्री वांगचुक से अपील की है कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या का पालन करें और जल्द से जल्द अपना वजन सामान्य करें। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुदुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज बुखारेस्ट के विक्टोरिया पैलेस में रोमानिया के प्रधानमंत्री इली बोलोजान के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसोर डैन के साथ भारत रोमानिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगे। बाद में राष्ट्रपति मुर्मू रोमानिया की संसद जाएंगे और सेनेट के अध्यक्ष मिर्चा अब्रुदयान और चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के अध्यक्ष सोरिन ग्रिनेनू से मुलाकात करेंगे। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के चलते ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का शुभारंभ स्कॉटलैंड के ग्लासगो में एक भव्य और रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। 10 दिवसीय इस आयोजन में 74 देशों की टीमें भाग ले रही हैं। ध्वज वाहक मीराबाई चानू और औपचारिक मशाल वाहक लवलीना बोरगोहाइन के नेतृत्व में भारतीय दल ने तिरंगा लहराते हुए अरेना में प्रवेश किया। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, सौराष्ट्र, कच्छ और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बने रहने का अनुमान है। आज कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, माहे और तेलंगाना में तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रुन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ जहाँ होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं 11:10। हम रेडी है आपकी दिन की सेकेंड इनिंग्स के लिए और ये रही हमारी दूसरी प्रसारण सभा यानी सेकेंड ट्रांसमिशन, बिल्कुल फ्रेश और एनर्जी से भरपूर।

दोस्तों सुबह की भागदौर अब धीरे धीरे सेटल हो रही है और लंच ब्रेक का इंतजार शुरू। तो क्यों ना इस वक्त को बनाए थोड़ा और म्यूजिकल। चाहे आप ऑफिस में मीटिंग्स टैकल कर रहे हो या घर पर अपने काम खत्म कर रहे हो, हम हैं आपके साथ आपका मूड को बिल्कुल लिफ्ट करने के लिए। तो बकल अप, क्योंकि अगले कुछ घंटों के लिए होने वाले हैं फुल एंटरटेनमेंट और धमाकेदार म्यूजिक से भरा हुआ। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सेकंड ट्रांसमिशन। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता एके सक्सेना। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा ये सभा फिल्मी लहर कार्यक्रम के साथ। और आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में एक बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म बैंड बाजा बारात।

कीजिए दोस्तों पैसे। ये बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म गन चक्कर। इस गीत के बोल, इस गीत को बोलते हैं लेजी लैंड। ओनली ऑन अरुणा FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, मैं लौट कर आता हूँ।

0: तो दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर आकाशवाणी ईटानगर के आरोन एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात. और अब अगले कार्यक्रम आप सुनेंगे वेस्टर्न मेलोडीज.
1: हेलो गाइस एंड वेलकम टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर. आई एम सैम योर होस्ट फॉर द डे. टुडेस प्लेलिस्ट इज अबाउट कॉन्ट्रास्ट. सम सॉन्ग्स आर प्लेफुल, अदर्स आर डीपली रिफ्लेक्टिव, बट टुगेदर दे कैप्चर द एक्साइटमेंट, अनसर्टेनिटी एंड कॉन्स्टेंट चेंज दैट कम्स विद ग्रोइंग अप. We begin with American Girls, a song that celebrates charm, freedom, and youthful energy. Harry Styles brings his signature style to a track that feels both nostalgic and fresh. American Girls by Harry Styles.

और श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुणा FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, लेकिन कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर में एक बार फिर से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
0: कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रश्न पत्र लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने श्री वांगचुक को रचनात्मक संवाद और सकारात्मक हस्तक्षेप का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध और विद्यार्थियों के प्रदर्शन को लेकर दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
3: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है।
0: श्री बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष के हंगामे के कारण सदन को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर भी सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है। राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित हो गई है, लोकसभा की कार्यवाही जारी है। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 719 अंक गिरकर 75,672 जबकि निफ्टी 196 अंक गिरकर 23,673 पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over the NEET paper leak case and student protest. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., the house paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. Later, when the speaker tried to take up the question hour, the opposition members started sloganeering, demanding resignation of Union Education Minister Dharmendra Pradhan. Mr. Birla urged opposition members to cooperate in running the House, but they did not pay heed to the advice of the Speaker, which led to the adjournment of the House till 12 noon. The upper house also observed silence as a mark of respect to the memory of the martyrs. After that, the chairman tried to take up zero hour and allowed Leader of Opposition Mallikarjun Kharge to speak. Mr. Kharge raised the issue of NET paper leak and student protest over the matter. As uproar continued from the opposition and treasury benches, the chairman adjourned the house till 12 noon. Prime Minister Narendra Modi has said that he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get this bill passed by the House at the earliest.
1: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है. लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए. गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं. हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो. सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाए इसका प्रबंध किया.
4: The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumors and false claims to mislead the students and the youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night. In the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh, Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. Earlier, 65 members of parliament from different political parties had visited or signed letters urging him to break the fast. Mr. Wangchuk said this was done after long negotiations on various conditions. India and Romania have signed three agreements for cooperation in the fields of science and technology, education and sports. The agreements were signed after delegation-level talks between President Draupadi Murmu and her Romanian counterpart, Nicușor Dan, in Bucharest yesterday. In her press statements, President Murmu said India and Romania have shared a close and enduring friendship for over 7 decades, based on mutual trust, respect and strong people-to-people ties. The President said the partnership is entering a new phase with more ambitious goals, strong cooperation and a shared vision for the future. Brent crude oil prices rose above $100 a barrel for the first time since May as tensions escalate in West Asia. Prime Minister Narendra Modi today extended his best wishes to the Indian contingent who are participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. In a social media post, Mr. Modi expressed confidence that Indian athletes will compete with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. And with that, we end this news bulletin.
5: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, और अब आप सुनेंगे द सो गजल।

0: सत्संगी
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों कोई चांद से पूछे रात क्या होती है, कोई हमसे पूछे बात क्या होती है। दोस्तों आपका दिल थोड़ी सी शाम और देर सारे जज्बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और गजल की इस खूबसूरत सफर में आप सबका स्वागत है। अगले कुछ पल भूल जाइए दुनिया का शोर शराबा, अपनी चाय का सिप लीजिए और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज हम सुनाएंगे दिल को छू लेने वाली वो शायरे नगमे जो सीधा आपके दिल में उतर जाएंगे। तो चलिए खोलते हैं जज्बातों का ये पन्ना सिर्फ आपके रेडियो स्टेशन पर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननासोर। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गीत अदनान सामी की आवाज में।

दोस्तों, सीने में जुनून और आंखों में देश का गुरूर रखते हैं हमारे वीर जवान हर मौसम में सरहद पर जरूर पहरा जरूर रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास, और स्वागत है आपका आपके सबसे प्यारे सबसे खास शो गीत माला में। दोस्तों, खबर चाहे बर्फीली सियाचिन का हो या थार के तपते शहर का, ये शो है हमारे देश के उन जानबाज जवानों के नाम जो सरहद पर तैनात है ताकि हम चैन की नींद सो सके। आज हम लेकर आए हैं आपके फेवरेट रेट्रो मेलोडीज, दिल से भेजी गई ख्वाहिश से, और वतन के सेना फौलाद जवानों की कुछ दिल की बातें। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि ये गीत माला आपकी और आपके परिवार के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाने वाली है। सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। लीजिए पैसे ये बेहतरीन गीत इस शो का पहला नगमा अरिजीत सिंह की आवाज में।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबंधित प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।

0: हाँ जी दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम गीत माला। आई होप कि इस कार्यक्रम में बजे सारे गाने आप सभी ने काफी ज्यादा एंजॉय किए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर। अब आप सुनेंगे अगले कुछ पलों के लिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे संगीत में सफर पे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले ढाई महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार छात्रों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और उनके भविष्य को खतरे में डालने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ कल रात गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भूख हड़ताल पर बैठे कार्यकर्ता सोना वांगचुक से मुलाकात की और छात्रों की चिंताओं पर विस्तार से चर्चा की, जिसके बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने का फैसला किया। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण बार बार बाधित हुई। दोपहर 12 बजे दोनों सदनों के फिर से शुरू होने पर विपक्षी दलों ने सदन को सुचारू रूप से न चलने दिया, जिसके बाद लोकसभा को सोमवार 11 बजे तक और राज्यसभा को आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के पटियाला जिला कार्यालय के एक प्रवर्तन अधिकारी को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। सीबीआई के सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को एक शिकायत के आधार पर कार्रवाई की गई। सीबीआई ने आरोपी को शिकायतकर्ता से 2.5 लाख रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। निदेशालय ने कहा है कि जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के उस मामले से संबंधित है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी शामिल है। मामले की जांच जारी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.3% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 248 अंक गिरकर 76,143 पर, जबकि निफ्टी 75 अंक गिरकर 23,795 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समय से खेलेंगी। भारत ने कल हरारे में 3 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में जिम्बाब्वे को 7 विकेट से हरा दिया। वैभव सूर्यवंशी ने 19 गेंदों में 50 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने महज 14वें ओवर में 126 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 125 रन बनाए। श्रृंखला का दूसरा मैच कल इसी मैदान पर खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said he has directed departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft late last night to him. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the Cabinet today. He said after incorporating the suggestions of Cabinet colleagues, it will be given its final shape.
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले ढाई महीनों में अनेक विहित कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का एक वर्ष बर्बाद न हो। सरकार ने अभी कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया।
4: The Lok Sabha has been adjourned till Monday as ruckus continued in the House for the fifth consecutive day today. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the government is ready to discuss the NEET paper leak issue from day one. He said due to certain conditions being imposed by the Congress, the discussion has not been able to proceed. Mr. Rijiju said it is the collective sentiment of all the members that there should be a meaningful discussion on the issue. The minister said in the cabinet meeting today, decisions will be taken on strict measures and the introduction of a strong law to address this paper leak issue. Earlier, when the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m, the House paid tributes to the martyrs of the Indian Armed Forces who gave the supreme sacrifice during the Kargil War. The Rajya Sabha has also been adjourned till 2 p.m. over the NEET issue. When the House met after the first adjournment at 12 noon, Chairman C.P. Radhakrishnan tried to take up the question hour, but the opposition continued with their sloganeering, demanding the resignation of the Union Education Minister. The Delhi police has informed that 480 Pakistan-based social media handles involved in coordinated misinformation campaigns have been identified and blocked. Delhi Police DCP Sumit Jha said these social media handles were involved in spreading rumours and false claims to mislead the students and youth. He urged people to always verify information before trusting and sharing them. Activist Sonam Wangchuk has ended his hunger strike after 26 days at a private hospital in Gurugram last night in the presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. Sonam Wangchuk's wife, Gitanjali Angmo, and senior leaders of the apex body of Leh Ladakh were also present at the hospital when he ended his fast. The Enforcement Directorate, ED, conducted searches at 8 locations today across Delhi, Uttar Pradesh and Punjab in connection with a money laundering case linked to an alleged bank fraud. ED said the investigation arises from a CBI case relating to fraud involving approximately 450 crore rupees. Further investigation is underway. BJP National President Nitin Naveen has said the government stands firmly with the citizens affected due to heavy rainfall and flood situation in Gujarat. In a social media post, the BJP president stated today that the Bharatiya Janata Party stands firmly with the affected citizens in the spirit of service and dedication and is actively providing cooperation in the relief efforts. In Jammu and Kashmir, amid the continued closure of the Jammu-Srinagar National Highway due to heavy rainfall and landslides, the Northern Railway yesterday introduced a special train between Srinagar and Sri Mata Vaishno Devi Katra to facilitate stranded passengers. The special service helped evacuate over 600 passengers affected by disruption in road connectivity. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of the World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the championship. Five-time world champion Vishwanathan Anand has taken charge of the International Chess Federation as interim president after its Russian head was placed on the latest European Union sanctions list. And with that, we end this news bulletin.
0: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से हिंदी क्लासिक म्यूजिक के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों वक्त गुजरता गया मगर अंदाज ना बदला, इन पुराने गानों का कभी साज ना बदला। मैं हूं आपका दोस्त प्यारा दोस्त आरजे ननास और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खूबसूरत शो में जहां हम जीते हैं म्यूजिक का गोल्डन एरा। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फ्रॉम द फिल्म धन।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की

और मेरे प्यारे श्रोता दोस्तों, इसी के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स, उसके बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: और प्यारे प्यारे श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब अगले कुछ पलों के लिए आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार, लेकिन हम फिर मिलेंगे हमारे इस संगीत में सफर में एक बार फिर से हिट्स ऑफ 90s के साथ। तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, क्योंकि यहां होती है दिल से दिल की बात।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reforms after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. And India's Anahat Singh enters the semi-finals of World Junior Squash Championships. Prime Minister Narendra Modi has said that he has directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they worked continuously and submitted the draft to him late last night. In a video message last night, Mr. Modi said this draft, which includes provisions for fast-track courts and stringent punishment, will be discussed by the cabinet today. He said after incorporating the suggestions of cabinet colleagues, it will be given its final shape. The Prime Minister said as the second week of Parliament begins on Monday, the government will make every effort to get the bill passed by the House at the earliest.
2: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: The Prime Minister said over the past 2.5 months since the paper leak incident, several steps have been taken. The culprits have been arrested and are in jail. Mr. Modi said the government's foremost responsibility was to ensure that students did not lose an academic year, and it was essential to conduct the examinations immediately.
2: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही

0: athletes will compete with passion, determination and a spirit of excellence. The Prime Minister said the skills and dedication of the country's athletes continue to inspire countless Indians. India's Anahat Singh has entered the semi-finals of World Junior Squash Championships after beating Egypt's Habiba Rizk 11-7, 11-5, 6-11, 11-9 in the quarterfinals. With this win, Anahat has become the first Indian to reach back-to-back semi-finals in the World Juniors and a firm favourite to win the title. Benchmark domestic equity indices pared their initial losses and were trading around 0.5% lower in afternoon trade today. The Sensex slipped 403 points to 75,989 and the Nifty fell by 116 points to 23,754. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishments to culprits. Second round of talks between government and CJP begins at Constitution Club over NEET paper leak row. Showdown continues in Parliament over NEET paper leaks. Lok Sabha adjourned for the day amid opposition uproar. Supreme Court directs Centre and NTA to file detailed affidavits on progress made in implementing reform after NEET UG paper leak. India calls out United Nations for ignoring repression in Pakistan-occupied Kashmir, accuses Islamabad for systematically crushing rights of the people. IMD forecasts very heavy to extremely heavy rainfall over East Rajasthan, Gujarat and Madhya Maharashtra today. India's Anahat Singh enters semi-finals of World Junior Squash Championships. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमनकारी गतिविधियों को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नजरअंदाज किए जाने पर निराशा व्यक्त की। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
2: फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का यह मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा।
1: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीकों से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा कि इन अदालत में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन हो।
3: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक

0: मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की घोषणा को देश के शिक्षा प्रणाली के लिए मील का पत्थर बताया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह तथा कई अन्य भाजपा नेताओं तथा कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की बातचीत जारी है। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में हुए महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांका, अभिजीत दिप्ते और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनकी दो शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई है। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों में आज लगातार पांचवें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
1: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूँ, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टी के एमपी भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज पांचवा दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा कि विपक्ष को सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना चाहिए। इससे पहले नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिन में 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला सहित सदन के सदस्यों ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: दिनांक 26 जुलाई 2026 को कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ है। ये सभा भारतीय सशस्त्र बलों के उन वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करती है जिन्होंने अत्यधिक दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, विषम परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम की परवाह न करते हुए अद्वितीय वीरता और अटूट संकल्प का परिचय दिया।
0: करगिल शहीदों की याद में सदन में मौन भी रखा गया। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर शोर शराबे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया लेकिन विपक्ष ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा जारी रखा। दिन में 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर सदन में करगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि करगिल विजय दिवस 1999 के करगिल युद्ध में भारत की विजय का स्मरणोत्सव है।
3: On this occasion, this house pays its respectable homage to the gallant martyrs who made the supreme sacrifice in service of the nation. We also express our profound gratitude to all the members of the armed forces.
0: राज्यसभा में भी शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को नहीं हटाया, विपक्ष नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले पर किसी भी चर्चा में हिस्सा नहीं लेगा। पत्रकारों गांधी ने कहा कि छात्रों की तीन प्रमुख मांगे हैं जिनमें शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी शामिल है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने नीट परीक्षा पत्र लीक मामले में जवाबदेही तय करने की मांग की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज नई दिल्ली सहित 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद रखने की घोषणा की है। इन स्टेशनों में लोक मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंबा मोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, झंडेवालान, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग और शिवा स्टेडियम शामिल हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा जारी रहेगी लेकिन नई दिल्ली स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर

0: है और एआई से बनाई गई है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और फेक बताया है। वीडियो में दावा किया गया है, जो गलत है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 8 स्थानों पर तलाश अभियान चलाया। ये कार्रवाई एक कथित बैंक धोखाधड़ी से धन शोधन मामले के संबंध में की गई है। चेन्नई के पास मधुरंथकम में आज एक सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। पुडुचेरी से चेन्नई जा रही एक कार की लॉरी से टक्कर के कारण ये दुर्घटना हुई। हादसे के समय पिता और पुत्र सहित 3 लोग चेन्नई हवाई अड्डे जा रहे थे। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुड़ा यात्रा जारी है। पहंडी अनुष्ठान पूरा हो चुका है और तीनों देवी देवताओं को विधिपूर्वक उनके अपने अपने रथों पर विराजमान कर दिया गया है। अन्य पारंपरिक अनुष्ठानों के संपन्न होने के बाद रथों को खींचने की प्रक्रिया शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
1: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की पहंडी रस्म सफलतापूर्वक पूरी हो गई है और इन भाई बहन देवताओं को बाहुड़ा यात्रा, श्री जगन्नाथ मंदिर वापसी की शुभ यात्रा के लिए उनके रथों पर विधिवत विराजमान किया गया है। श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी ग्रांड रोड लाखों भक्तों से खचाखच हुई है। वापसी की यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ का रथ मौसी माँ मंदिर पर पारंपरिक रूप से रुकेगा, जहां भगवान को पोड़ो पीठा का भोग लगाया जाएगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
2: इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इन इंडिया EU स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन आर सेंट्रल टू द कंटेम्पोररी पार्टनरशिप विथ ए कंबाइंड मार्केट ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल एंड एन इकोनॉमिक जोन ऑफ अराउंड 25 ट्रिलियन डॉलर्स। द इंडिया EU FTA इज एमंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द वर्ल्ड।
0: भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने कहा कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। यह टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989, जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिस्र की हबीबा रिस्क को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिस्र की बाब समेह से खेलेंगी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। गुजरात में पिछले 3 दिन से मूसलाधार वर्षा के कारण राज्य में जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक रिपोर्ट।
3: दक्षिण गुजरात में दो दिन तक भारी बारिश के बाद आज उत्तर गुजरात में भी भारी बारिश हो रही है। पिछले छह घंटों में उत्तर गुजरात के वाओथरा और पाटन जिलों में 6 इंच से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सुबह से अब तक राज्य के 239 तहसील में बारिश हुई है।

0: किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए अहमदाबाद, नवसारी और वलसाड में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कुल 49 टीमें और भारतीय सेना की 6 टीमें तैनात की गई है। दूसरी ओर राज्य में भारी बारिश के बीच राहत और बचाव का काम भी जोरों पर चल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और सीजेपी के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दूसरे दौर की वार्ता जारी। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। और भारत की अनाहत से विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब शुरू होगा दोस्तों द हिट्स ऑफ 90s।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

नसीर जी का छाया है नशा और बदल गया है मौसम, आ गए हैं वापस 90s के वो दिन, वही पुराने दौरे करम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट, और आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे सबसे एनर्जेटिक, सबसे आइकॉनिक शो हिट्स ऑफ 90s में। दोस्तों वैसे देखा जाए तो 90s का दौर काफी अलग था। कैसेट्स के रील को पेंसिल से रिवाइंड करने का मजा, वॉकमैन का क्रेज और टीवी पर फेवरेट गाने का गाना आने पर मम्मी से बोलना आवाज तेज करो। 90s का म्यूजिक सिर्फ गाना नहीं बल्कि वो हमारी मेमोरीज का सबसे प्यारा हिस्सा था। और जब बात 90s की कॉमेडी और रोमांस की हो तो हमारे खिलाड़ी भैया अक्षय कुमार और द गॉर्जियस जूही चावला की जोड़ी को कैसे भूल सकते हैं। तो चलिए आज की इस सफर की शुरुआत करते हैं एक फुल ऑन हाई एनर्जी ट्रैक के साथ, दिल थाम के बैठिए क्योंकि प्लेलिस्ट का पहला गाना रेडी है 1997 की सुपरहिट फिल्म मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी से अनु मलिक की कॉम्पोजिशन और उदित नारायण अनुराधा पोडवाल की धमाकेदार आवाज में अकेला है मिस्टर खिलाड़ी, ओनली ऑन अरुणा FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। लीजिए दोस्तों पैसे ये बेहतरीन नगमा आप सबके लिए, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए, मैं लौट कर आता हूँ।

0: चलिए दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर मिलेंगे हमारे कुछ बेहतरीन नगमों के साथ इस कार्यक्रम में, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 24 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं, या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। तो सुनिए इस महीने 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका प्यारा होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। आइए लीजिए पेश है आप सबके लिए ये बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म इश्क़।

0: तुम्हें मुझसे इश्क है?
1: मुझे शर्म आती है।
0: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
1: आई लव यू।
2: यहाँ

0: और सो तो दोस्तों आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, और उसके तुरंत बाद मिस मी कमांड श्रोताओं का समाचार, और उसके तुरंत बाद ताए खामती श्रोताओं का समाचार। लेकिन हम फिर मिलेंगे आपको कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट के साथ, तो बने रहिए और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: This is Prem Sharma. Today's headlines are: Prime Minister Narendra Modi calls for strict action against paper leaks, assures early passage of bill for proposing fast-track courts and stricter punishment to culprits. Supreme Court directs Centre and National Testing Agency to file detailed affidavits on the progress made in implementing reforms following the NEET UG paper leak. The Lok Sabha adjourned till Monday as the disruptions continued in the House for the fifth consecutive day today. President Draupadi Murmu calls for deeper India-Romania economic ties at India-Romania Business Forum. Prime Minister Narendra Modi extends best wishes to Indian contingent participating in the Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. India and Romania signs three agreements for

0: cooperation in the fields of science and technology, education and sports. India expresses disappointment with the United Nations for ignoring the repression in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. India criticizes Pakistan at the United Nations Security Council for over remarks on Jammu and Kashmir. Central Bureau of Investigation arrest enforcement officer of the Employees Provident Fund Organization District Office in Patiala in bribery case. U.S. military carries out 13th consecutive night of strikes on Iran, says the attacks are aimed at degrading Tehran's ability to threaten civilian mariners and commercial vessels transiting through the Strait of Hormuz. Activist Sonam Wangchuk ends his 26-day hunger strike at a private hospital in Gurugram last night in presence of Union Ministers J.P. Nadda and Jitendra Singh. That's all in the news headlines. Namaskar.
1: Anja Akashwani Itanagar Dibrugarh ra dungin pan tarik katarmo kumrun yatong lai hing kanin katarmo katam ka baji ka samrat kin kaman lai kung song fo man ra ke mang rogen lu apa kin kaman lai kung song climbing kasat ka gya chining ra Pradhan Mantri Narendra Modi ka dumo paper lik samlawan he shomo Songdan pa raila ora kinin unlike yin kanglad pe ka so anja hi lang lang step uthai mai dune ka domo ora corporate ban shomo samlam chawan bi jail hi tha ne ka shongli dune ka dune ka domo ora ngo ho wai video message hi pradhan mantri ka domo sarkar responsibility imchawan sasan academy year ora tare mai hi kat mai responsibility done ka domo ora exam machawan fefe takat ora kin exam machawan ko mai fefe takat done ka domo ora paper lik samlawan hatai ate lai mai done ka domo wan show mo sasan ra sa nau pai san duk sam tau me msan hi nai ka tang tha mo ra sa ka prem minister narendra modi ka do mo wan ngo ho wai concern department vi first record takad dne ta tra dne ka proposal tayar takad dne ka order phi ka ra governor le jain kiti parne ka wan lok bhavan hai abotani vidya Nititan Pachin Colony Hai Nahalagan Nagalan Nahalagan Hai School Library Van Shaumo Mopan Shaumo Sanhi Van Kopuhi Taineka Ksitka Kandanka Tatra Ksitka Tatra Duneka Domo Saka Hano Lakanin Jack P ka Saka Vika Domo Van Sasan School San Ksitra Nera Sasan bhavishya nai ring samang dune ka domo saka ngo ho we katalmo kumbrin katalmo green yashi lai 2000 ay hing mo katalmo katam rat cha governor ka school library hi chawan ring ta sam dune ka kupoi hi kasat ka ta sam dune ka pradhan mantri ve dune ka domo ora chief minister pema khandu ka dungin Itanagar ra Lok Bhavan hai Governor Jet Jain Keti Parnek ve Phun ka Saka Preka tau State Machawan Development Ki Project Vara Major Deal Takat Van Natural Disaster He Shao Takat Long Dune ka Do Thao Man Vara Governor ka Chief Minister Vara Team Arunachal Pradesh Vi Lao Kyap Mokumo Seva Kat kan kahi mchawa hatai ring dunia ka congratulate kat mo ra soka lau kiap mokumo gung lag infrastructure mchawan education ra healthcare education connectivity tourism ra natural development wan hi wan hatai kisit mcha age bari man progress samman dunia ka दो था मो सबका सेवा आपके द्वार इनिशिएट लाओ कम चावन में नहीं हटाई रिंग दुनिया का गवर्नर का दुनिया का दो था मो रा रिव्यू मीटिंग है चावन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एजुकेशन पीडी सोना का पार्टिसिपेट सन भी रिव्यू मीटिंग है एडवेंचर मिचुका वरा टूर मिचुका टूर टूरिस्ट टूर सन भी हटाई रिंग दुनिया का तू कहीं पॉइंट कुमो कहीं जीरो अंशाओं ही वे तैयारी तक दुनिया का मीटिंग ही लॉजिस्टिक वरा सुरक्षा हॉस्पिटल हॉस्टेबिलिटी वरा इंफ्रास्ट्रक्चर वरा प्रमोशन वन नए प्राय प्राय का ताओ सका कीविटी तवांग है आईसीईए आर मचावन आईआईवीआर वाराणसी है चौंघु कता उमसान भी नए हटाए रिंग दोने का दो था उमसा का काम कर सका तवांग है सर गांव दोने का दो उमता उमचावन है उमचा हाई यल्डिंग वेजिटेबल वैरायटी उमसान उमसान ही नए डेमोंस्ट्रेट कर कता हो वरा इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम नए कर कता हो सका वरा ओलंपिक है मिडिल ईस्ट मचा लोविना बोरगटिन बाय दोमतावन का सुत का कन का सका 75 दोमताव बॉक्सिंग सेमी फाइनल है तन का रा वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन अनाथ दोमताव मचावन का नए हताई रिंग कन का सका FIDE है इंट्रीम प्रेसिडेंट वन का नए हताई रिंग कन का दुनिया का दो था मन रा दुंगिन मचा किन नो लाय कुंग सोंग पो मन अनसाउ मचा समांग रा तो किन तंजाय कमान लाय तंजाय ग्याचिनिंग

तो उरा बफेम सो ताएं उरा बकिंग लू पुल तंजाय ज्ञान चिके रा ली गसु किन कमान लाय कुंग सोंग फाय मन हरंग रा बाजी कसम रा प्रूट ना ये किन कमान लाय कुंग सोंग कसत का ज्ञात ना शुनिंग हरंग रा

नै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेव सिपा सिसपसी चम सी मीटर होपा चिसे भा किलो हस मई मु चलांग खामताई खामती हो को मा हो मने वन सोक्या लानी बीटई सोंहिंग पा साउ तो इंगनाजी पी मु सोंहिंग साउ हो नुन जुलाई ने साउ सी वन नम हो वती कुन सिंग कुन मेंग तंग लाई मौसम नम खाम मने हे नै थोम खाता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वा कुन पाओ पेपर लीक नै खौ मै सेव कन यो निसी नम खाम नै वन मंगा यान फाइ खम मै लो वीडियो मेसेज लो हे मा हो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक वन मनै सोक्या नमै पब्लिक ngun चेक नु सोंग लाक अबुतानी विद्या निकेतन पाचिन कॉलोनी नहालगन खौमै लुतांग वांगतान का नेयाति लोक भवन हंग औखनतानु सोन लेक सोन लाय स्कूल लाइब्रेरी हो Chief Minister Pema Khandu Hong Won, Governor Lieutenant General K.T. Parnayak Mai, Niya Tilok Bhavan Itanagar, Wan Manai, Songkha Chau Hom Nangsi, Pong Kanpa State Development Khansam Ki Project Mai Aosi, Long Tang Sang Kanka, तंग ने गवर्नर मन चौ योंग यो का चीफ मिनिस्टर खनसम टीम अरुणाचल प्रदेश खौ मै तक तांग से पी यो निसी नु पब्लिक सर्विस खनसम लीडरशिप मै हो मिनिस्टर कनलेम एजुकेशन पीडी सोना वन मंगा किसब दे मै रिव्यू मीटिंग मै तंग कोप Deputy Commissioner Si Yumi, Additional Deputy Commissioner Mechuka Khansam, Head of Department Humsi Mechuka Truth Quiz Songchum Walom Mai Khau Nangka. Meeting Nai Pong Safety, Hospitality, Infrastructure Khansam, Promotional Activities Mai Aosi Tak Tangka Ho. Krishi Vigyan Kendra KVK Tawang. तंग कूप इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी नीनाम सी फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन न हाई येल्डिंग वेजिटेबल वेराइटीज तंग मन इनपुट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम अन कूपा कूना चित मान न चिला तवांग मई तक तंगा नम हो प्रोग्राम मई स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चरल खनसम नोडल ऑफिसर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी मंचाउ ऑन हिट हो तखा ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहाई न वोमेन चिसिप हा केजी बॉक्सिंग सेमीफाइनल में पी ओंका मनाई जिमनास्ट Tapis Varnat Das, Swatis K.

0: จอมนั่งอคิงนามนารีในสตูดิโอไม่เจอกันมาว่าพาป่วยเนี่ยจะหั่งมันในคำใดคำที่เอาตือใครไม่สดเยอะหอ
1: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे ताई खमती श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात। और अगर इसी कार्यक्रम को अगर आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। तो अब शुरू होगा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। हमारे साथ जुड़े रहिए रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

फिल्मी दुनिया का हर राज आप तक पहुंचाएगा ये जज्बात। गॉसिप हो, ग्लैम हो या स्टार्स की बातें, बॉलीवुड की खबरों से सजेगी ये रातें। नमस्कार दोस्तों, अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में मैं हूं आरजे ननास और स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो बॉलीवुड अपडेट्स में। जी हाँ दोस्तों, आज फिल्मी गलियारे में इतना ड्रामा, इतना एक्साइटमेंट और इतने बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए हैं कि मेरे पास खबरों का पूरा पहाड़ है। तो अगर आप भी है प्योर बॉलीवुड बब्स तो अगले कुछ पलों के लिए कहीं मत जाइए, क्योंकि हमारे पास है बॉलीवुड की सबसे हॉट एंड फ्रेश अपडेट्स। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो इंटरनेशनल लेवल पर हंगामा मचा रही है। हाँ जी दोस्तों, नीतीश तिवारी की मैग्नम ओपस रामायणा का फीवर सैन डियागो कॉमिक कॉन 2026 में सर चढ़कर बोल रहा है। हमारे लॉर्ड रामा रणबीर कपूर और लंकेश रावणा, यस दोनों SDCC यानी सैन डियागो कॉमिक कॉन के रेड कार्पेट पर जबरदस्त इंडियन ट्रेडिशनल और स्लिक सूट्स में नजर आए। उनके फोटोज इंटरनेट पर वायरल हो चुके हैं। पूरा ग्लोबल मीडिया इस एपिक सिनेमैटिक स्पेक्टेकल के लॉन्च का इंतजार कर रहा है।

दोस्तों अगर बात सिनेमा की कर रहे हैं तो जुलाई का महीना टोटल फायरवर्क्स से भरा हुआ है। दोस्तों इस हफ्ते थिएटर्स में आई है राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश की ड्रामा फिल्म रफ्तार और साथ ही श्रेयस तालपड़े की द इंडियन स्टोरी। ऑडियंस थिएटर से बाहर निकलकर परफॉर्मेंस और स्टोरी लाइन की बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो जाइए और जरूर देखिए।

और दोस्तों पिछले हफ्ते रिलीज हुई अजय देवगन, अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की मल्टी कॉमेडी धमाल 4 बॉक्स ऑफिस पर अभी अभी धूम मचा रही है। ऑडियंस अपनी फैमिली के साथ जाकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही है। और अगर आप स्पाई यूनिवर्स के फैन हैं तो आलिया भट्ट और सारवरी की एक्शन पैक स्पाई थ्रिलर अल्फा ने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली है। तो जाइए इस फिल्म को भी जरूर देखिए और अपना कमेंट्स जरूर बताइएगा।

दोस्तों वक्त है कुछ चटपटे खबरों का। आइए, इंटरनेट पर आग लगी हुई है तनिष्क भागची और अमाल मलिक के बीच के कंट्रोवर्सी को लेकर। अमाल ने सोशल मीडिया पर बिना नाम लिए एकॉस्टिक राइट्स और म्यूजिक क्रेडिट्स को लेकर एक स्पाइसी स्टेटमेंट दिया है और फैंस के दो ग्रुप्स बन चुके हैं। और अब दोस्तों आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में एक बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म धूम।

तो दोस्तों इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का रोना FM 102.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों ये थे आज के बॉलीवुड के सबसे हॉट फ्रेश और स्पाइसी अपडेट्स। हम फिर मिलेंगे कल कुछ मसालेदार और मजेदार किस्सों के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ एंड सुनते रहिए रोना FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे वांछो श्रोताओं का समाचार।

इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि जुलाई महीने सा आली तारीख हुकुरबार इपोहांसो आजम बाजी पुनी मिनट मुख्य फिशम के वांचो जायका पों कपई पोवा कहो पाए फाले वांग का वांगसुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए मजाता वीडियो मैसेज का हम वन के जंगन का से मा पेपर लीक होन क्या का अंगता आहिया नाई का अंग मंचंग चंपु अब हजा ए लाख लाख लाइन नसमनु हिया होम का को हम खा तो यो तले पो कक ले सत्तेपु बो मा हजा पक टिकतो अंग ले एन क्या लेता हो नहीं तो खंग ए माओ मा मोलम्मा मोकसा आजोंग मुंग ले ngo te pu hain kya e haja chisuchi mai mot ma hakavon kya tabi yo khanang mi sa kapalo an kya e jail to chu shodo le le vande modi e jabo ma gamna ja ba ma haja paper leak hon kya e line no sam an kya academic exam punta ba to naksam ang azong mo kya lam ma haja examination chona khai le vai tam anezan le angot ang tamde pu bo ma haja कांगौतुं फन ले फापुकु मा फास्ट ट्रैक कोर्ट जिंगेजौ अंकेता प्रपोजल जिंगहै लेचि ए मनी कंसर्न डिपार्टमेंट फो अंका कोपु बुमाजे डिपार्टमेंट फो ए नोनन ले जो मोकसा अनक्या हज प्रपोजल ड्राफ्ट जिंगले मजा अपैले अपैले फादवा बुमाजा ड्राफ्ट मो अनि कैबिनेट टू सो मा वनजे अंक्या लचु वनडे अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी परनाइक ए मनी ईटानगर लोक भवन मा नाहरलगुन होनो पाचिन कॉलोनी मकिया आबोतानी विद्या निकेतन स्कूल अंग होम स्कूल लाइब्रेरी ताम अचन अचों अंक्या मोर सत्तो चोपोंग अंग मुन लाख अनि चेक को तुले काहुमा अजम गवर्नर एजांग मुन ची हजा स्कूल तो ले एन क्या ले निसा आज चे तारीख नि अपोंग असौ अंग यू क्या मा हजा स्कूल अंग क्या लाइब्रेरी मा लाइंग अक तम आचन अचों क्या बो मा नौसम लाइंग अक ए वन आचन अमय पुकु मा ची ए मुनसिन मच ओपोंग ए हे ओल वन ले तो रो क्या हन पक मा को ओतोन क्या चाउ ले अरुणाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मनी ईटानगर लोक भवन तो हईले स्टेट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के टी परनाइक फे अपों आसौले बोमहोखी एजा मा स्टेट मा मोकोसा ngo te kya khat kha kha kya project po homokosat boma state ma izum e ngai dong le ngo te kya teacher mo lem hia date nam ning kya natural disaster to itai zang zai po zingjau le amai ang kya motho sa ju po mo wan se le गवर्नर राजा बा मा चीफ मिनिस्टर खांडू हिया ची टीम अरुणाचल प्रदेश ओथम ए स्टेट अपन अवंग के फई मा जंगपुंग बन लंदो के हान पंग होम आचोक आसन तो ले स्टेट ए लेन के जंगपुंग बन बा मा इंफ्रास्ट्रक्चर लान ngang not हिंगम हाय हम लमसाई टूरिज्म हिया रूरल डेवलपमेंट निंग के तबी जो होमो खस सेक्टर मा अवंतो ले जो थोलन ले लेन ले ले ची ए आजु का सप्ताह क्या का अंगाउ जु ngai ban le boma governor e khanak nu pam tho chi tong tolan le mau mau holy government homo ko sat la pho apai a hai le ko oton le seva up ke door nyin kya flagship motto sat tho pho mo ko sa dau kya chu a chok asan hu le अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना ए मनी एडवेंचर मिचुका हिया मिचुका ट्राउट क्विस्ट 2.0 पोनपोंतु सो अंगोत आसो अंक्या हान पक मक्या मोचन काथन मो वनजे अंग सीयोमे डिस्ट्रिक्ट डीसी मिटुका होनो एडीसी हिया डिस्ट्रिक्ट अंक्या मामामो डिपार्टमेंट आखो के मिथम फैता रिव्यू मीटिंग तु सो अंगोत आसोले काहोमा अजंग बा हजा तु सो मा खटका के होली अंग हजा पोनपोंतु सो हा मेजंग माले अंगोत आसोले थोलन पुकु मा मामामो डिपार्टमेंट फो ताता फै आशा मकोई अलिंग तई ले मोकसा आजों मों अंक्या मो वनसे ले तावंग दिसिंग अंक्या कृषि विज्ञान केंद्र केवीके होथम ए वाराणसी होनोई तो क्या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च ICAR IIVR होथम पाई आशा मथम अनक्या ए तावंग डिस्ट्रिक्ट मके हवाक अन्न तिंग नोक तो खनक नु अंग होनै चोंगलो अंक्या होली सोई लाइफो
kaya thom homo khosat hone je apung anol ko oton ang chon chon le frontline demonstration siya input distribution program tu so angot asole kahoma ajang ba haja program ma manzai mitam ang haja soike lai thom scientific manzai hone je subject matter specialist horticulture hiya nodal officer Dr. Abhimanyu Chaturvedi e apung aho le ko oton le Izuma ngota sokle ngote ke Commonwealth Games hobo pat pan tu sokma Indian hobo pat mitam makang e Olympic ma chu medal kapalat dokya boxing bau shako Lovelina Borgohain shako am pujamban aga kg category boxing bau semi final danto haina bommachi atha yela ni saban tarik ni semi final ma tafaki pai abau apani haja Bama Indian Lawn Bowls Baumi Hotam Echu Mani Match Ani Ma Laddua Boma Ani India Ankya Gymnastic Baumi Tapeswar Nath Das Swatis KP Tapan Mohanty Hiya Yogeshwar Singh Am Laka Am Team Hiya Individual Event Gymnastic Bau Ma Abau Apan A Changtele Kahoma Ajang Baja Bama Prime Minister Narendra Modi e Scotland Days Glasgow Honui Ma Angot Asokle Mote Kaja Commonwealth Games Hobo Pat Pan Tuso To Ka Ankia Indian Hobo Pat Mi Tam To Kapalo To Lan Hai Ole Katle Yo Pumazamle Kaho Ivei

सुधा दोस्तों आप सुन रहे थे 1-4 का समाचार आकाश वन ईटानगर का अरुण एफएम 102.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए आइए ले चलते हैं आपको कुछ हिंदी फिल्मों गानों के हिंदी फिल्मी गानों के सफर में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार।

पियो और चिल करो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए ट्यून रहो, स्माइल करते रहो और सुनते रहो अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास।

0: nang presiden yang tu akar di double covid po European Union sanction list nang nung tu kamo lagbanga world champion yang tu Biswanathan Anand po International Chess Federation nang interim president matak tu nguru tu arau double covid po mtanatak sanction list nang yang situng Biswanathan Anand po International Chess Federation FIDE interim president mo kajang singo ro te rumlang eta nang thumre ira akashwani tara
1: dosto ek bar fir se swagat hai akashwani tanagar kendra ke arun fm 103.1 megahertz pe अभी आप सुन रहे थे तांगसा श्रोताओं का समाचार। इससे पहले आप बने हुए थे आपके अपने आरजे नानांश के साथ और अब आपके इस सफर में जुड़ चुके हैं आपके रेडियो साथी साजिद इकबाल। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको ले चलते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। दोस्तों गुड इवनिंग ईटानगर में आज हम बात करेंगे शाम को ढलने के फायदे के बारे में। यूं तो पैदल चलने के फायदे तो सभी जानते हैं, लेकिन शाम के समय ढलने से ज्यादा स्वास्थ्य लाभ मिल सकता है। दोस्तों शाम में ढलने से आपकी आंतरिक घड़ी को नियमित करके आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। दिन के समय प्राकृतिक प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर शाम को मेटालोनिन का उत्पादन करता है जो मस्तिष्क को सोने का संकेत देता है। शाम को टहलने से आप अपने शरीर के प्राकृतिक सर्कैडियन लय को और मजबूत कर सकते हैं और ज्यादा आरामदायक नींद भी ले सकते हैं।

0: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं गुड इवनिंग ईटानगर में शाम में टहलने के फायदे के बारे में। दोस्तों पैदल चलना तनाव कम करने का एक बेहतरीन तरीका है और शाम के समय की सैर विशेष रूप से प्रभावी हो सकती है। काम या स्कूल में लंबे दिन के बाद बाहर टहलने से आपको तनाव मुक्त होने और मन को शांत करने में मदद मिलती है। यह न केवल दिन भर के तनाव को पीछे छोड़ने का अवसर प्रदान करता है बल्कि यह आपके भविष्य के तनावों से भी बेहतर ढंग से निपटने के लिए लचीलापन विकसित करने में भी काफी मदद करता है। दोस्तों नियमित व्यायाम से मूड बेहतर होता है और अवसाद व चिंता के लक्षण कम होते हैं। शाम को टहलने से ताजी हवा और वातावरण में बदलाव आता है जिससे आप बेहतर महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा टहलने से आपको आराम मिलता है और आप पॉजिटिव सोच डेवलप कर सकते हैं जिससे जीवन के प्रति आपका समग्र दृष्टिकोण बेहतर होता है।
1: And press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर। ये आकाशवाणी ईटानगर का रून FM 103.1 MHz है। दोस्तों अभी से कुछ देर बाद आप सुनेंगे हिंदी समाचार, इंग्लिश न्यूज और नुक्ते श्रोताओं का समाचार। दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी 5:05 में कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव के साथ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने के दोषियों की गिरफ्तारी सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले में सरकार और CJP के बीच दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दूसरे दौर की वार्ता हुई। संसद के दोनों सदनों की

0: वाइनी पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट पेपर लीक के बाद लागू किए गए सुधारों की प्रगति पर विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री पीडी सोना ने एडवेंचर मेचुका और मेचुका ट्राउट क्वेस्ट 2.0 के आयोजन की तैयारी की समीक्षा की। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग ने ICAR IIVR वाराणसी के सहयोग से तवांग जिले के 7 गांवों में उच्च उपज देने वाली सब्जियों की किस्मों पर फ्रंटलाइन प्रदर्शन तथा कृषि आदान वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। रोड्स आर्ट्स एंड कल्चरल ट्रस्ट द्वारा अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख मिश्रित मार्शल आर्ट्स एवं कॉम्बैट स्पोर्ट्स संस्था एब्रासोमेंटे एकेडमी के सहयोग से ईटानगर में ब्राजीलियन जियोजित्सु पर 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। और भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक की घटना के बाद पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं। दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कल रात एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि सरकार की मुख्य जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना था कि विद्यार्थियों का शैक्षणिक वर्ष व्यर्थ न जाए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि संबंधित विभागों को फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
1: मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाए।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक परीक्षाओं अनुचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत मामलों की सुनवाई के लिए एक त्वरित न्यायालय का गठन किया है। इस कदम का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित तरीके से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करना है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पेपर लीक से संबंधित लंबित मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट के निर्णय की सराहना की है। श्री मेघवाल ने मीडिया से कहा है कि इन अदालतों में मामलों की सुनवाई प्रतिदिन होगी।
2: प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया कि पेपर लीक से संबंधित जो मामले अदालतों में लंबित हैं, चल रहे हैं, उनकी सुनवाई हम स्पेशली डेजिग्नेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके करवाएंगे, जिससे डे टू डे बेसिस पे सुनवाई होगी, स्पीडी ट्रायल होगा और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो युवाओं को न्याय मिलेगा।
0: स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और कई अन्य भाजपा नेताओं ने तथा कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दूसरे दौर की बातचीत हुई। ये बैठक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर युवाओं के नेतृत्व में चल रहे विरोध प्रदर्शनों में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के बाद हो रही है। CJP के प्रतिनिधियों सौरभ दास, आशुतोष रांगा, अभिजीत दीपके और दीपक बलियान ने सरकार द्वारा उनके 2 शर्तों को स्वीकार करने के बाद वार्ता के लिए सहमति जताई। ये शर्तें हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और हाल में हुई परीक्षाओं में अनियमितताओं से प्रभावित विद्यार्थियों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों ने आज लगातार 5वें दिन नीट पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। कई बार के स्थगन के बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे पहले स्थगन के बाद सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है।
3: पार्लियामेंट हम लोग चर्चा नहीं करेंगे तो बिल्कुल अच्छा संदेश नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी जी से अनुरोध करता हूं, आप अपने कांग्रेस पार्टी के साथियों को थोड़ा समझा दीजिए और बाकी कई पार्टीज के MPs भी निजी तौर पर सबने अपना मत रखा है कि चर्चा होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आज 5वां दिन है, हम इसमें एक अच्छा सार्थक बहस क्यों नहीं कर सकते।
0: भारतीय जनता पार्टी के सांसद शशांक मणि ने आज सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के फैसले का स्वागत किया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा है कि सरकार नीट UG परीक्षा विवाद सहित पेपर लीक की घटनाओं को गंभीरता से ले रही है और इन्हें संगठित अपराध मानती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संदेश का उल्लेख करते हुए कहा है कि सरकार पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है और इस संबंध में व्यापक कानून लाने की दिशा में काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के शिक्षण मंत्री पीडी सोना ने शी योमी जिला उपायुक्त, मेचुका के अतिरिक्त उपायुक्त तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में भाग लिया। बैठक में एडवेंचर मेचुका और मेचुका ट्राउट क्वेस्ट 2.0 के आयोजन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस दौरान कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विभागों के बीच बेहतर समन्वय, लॉजिस्टिक, सुरक्षा, आतिथ्य, आधारभूत संरचना तथा प्रसार प्रसार से जुड़ी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कृषि विज्ञान केंद्र तवांग ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ICAR IIVR वाराणसी के सहयोग से तवांग जिले के 7 गांवों में उच्च उपज देने वाली सब्जियों की किस्में पर फ्रंट लाइन प्रदर्शन तथा कृषि आदान वितरण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। कार्यक्रम का समय में डॉ अभिमन्यु चतुर्वेदी विषय विशेषज्ञ उद्यानिकी एवं नोडल अधिकारी द्वारा किया गया। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक खेती की आधुनिक तकनीकों की जानकारी प्रदान की। रूट्स आर्ट्स एंड कल्चरल ट्रस्ट ने अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख मिश्रित मार्शल आर्ट्स एवं कॉम्बैट स्पोर्ट्स संस्था एब्रासुमेंटे अकादमी के सहयोग से ईटानगर में ब्राजीलियन जिउ जित्सु पर 25 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया। ये कार्यशाला रूट्स अरुणाचल के सदस्यों तथा राज्य के अन्य रंग कर्मियों के लिए अभिनेता प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को लेकर विस्तार देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। बुडापेस्ट में भारतीय रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि प्रस्तावित भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता व्यापार, निवेश और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं को बढ़ावा देकर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कथित दमन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रिया को लेकर निराशा जताई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतनैनी ने यह कहा है कि कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ये टिप्पणी पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक बार फिर कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश के बाद आई है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई है। ब्रेंट क्रूड की कीमतें मई के बाद पहली बार 100 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंची। घरेलू शेयर बाजार में संविदा सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में 0.5% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 403 अंक गिरकर 75,989, जबकि निफ्टी 116 अंक गिरकर 23,754 पर पहुंच गया। भारत की अनाहत सिंह विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अनाहत ने मिश्र की हबीब रिजक को हराया। अब सेमीफाइनल में अनाहत मिश्र की बार स्मह से मुकाबला खेलेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को नीट यूजी पेपर लीक मामले के बाद सुधारों को लागू करने में हुई प्रगति पर एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराघे की पीठ ने नीट पेपर लीक मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि हलफनामे में केवल अस्थायी उपायों पर निर्भर रहने के बजाय सुधारों को संस्थागत रूप देने के लिए उठाए गए कदमों पर स्पष्ट विवरण होना चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बारे में धमकी भरे बयान में वीडियो का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और AI से बनाया गया है। इकाई ने बताया कि श्री गोयल ने प्रदर्शनों के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल लेफ्टिनेंट जनरल राजीव पुरी के एक वीडियो को लेकर बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस वीडियो को फर्जी और डीप फेक बताया है। वीडियो में कहा गया था कि दावा गलत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर जनरल पुरी ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के विरोध कर रहे प्रदर्शनों के बीच राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती का आदेश दिया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पेपर लीक घटना के बाद 2.5 महीने में दोषियों को गिरफ्तार सहित कई कदम उठाए गए। नीट पेपर लीक मामले पर सरकार और CJP के बीच नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में दूसरे दौर की वार्ता हुई। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के विरोध के कारण सोमवार तक स्थगित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय प्रेम शर्मा। Prime Minister Narendra Modi has said that he directed the departments to prepare a proposal for fast-track courts to tackle paper leaks, and they work continuously and submitted the drafts to him.

0: लाइब्रेरी हुनरंग गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर में अबोतानी विद्या निकेतन पाचन कॉलोनी नाहरलगन लोकभवन को लाख नीचे क्वेकर रोकनी इसेत तारीख जुन जंग हाजातनी रोकनी रोकपा गवर्नर पे अरे न्यावी थिन थे को होखोम्बा अरे लाइब्रेरी पे आंगांगा हनी स्कूल व नाना हे रंग न्यावी रंग जडरियन असन न्यावी थिन हे थियन रंग ना में होंगजाप का मजा चीफ मिनिस्टर पेमा खंडू में गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक रिटायर नंग लोकभवन ईटानगर को नंग हादांगवा कामखो को गिंथोमिन रंग रोवा गवर्नर में चीफ मिनिस्टर नंग दंगको आंगे का अति रंग मोट का था लाड चोबा नंग हादांग पे नंग ला सनवांग तांगा में होंगजाप का सेवा आपके द्वार हुमखो लमखो हे खो को मोट का रंग दंगको आंगे का दुम्बंगा वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद नंग इंटरनेशनल चेस फेडरेशन प्रेसिडेंट रंग लिटोक का अते मा को रशियन व अर्कदी द्वारकिदी दंगवा ओलंपिक मेडलिस्ट लवलीना बोर्गो है रोकनीत बंगा तुअक लिहक है बॉक्सिंग सेमिनल रंग लोमिन अरो अते रोक रोमवान थे तारीख जुलाई जंग को तकफा की दम नंग लोमिन लॉन बॉल नंग मिन वानी मिन्यान दुमनी जियन का तेजा जिमनास तपेश्वरनाथ दास स्वातिश केपी तपन मोहंती दिको योगेश्वर सिंह है तेजा लोमिन कृषि विज्ञान केंद्र तावांग दमको इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च वाराणसी है रूल में हाईलिंग वेजिटेबल वेराइटीज खो को हे थोवा अरदम को इंगित हादांगवा तावांग नंग हुमखो को फन को इका अरे प्रोग्राम पर डॉक्टर अभिमन्यु चतुर्वेदी सब्जेक्ट मैटर जडरियंते हॉर्टिकल्चर दिको नोडल ऑफिसर हे रूनंगवा मिनिस्टर फॉर एजुकेशन पीडी सोना मजा एडवेंचर मेचुका दिको मेचुका ट्रूथ किस्ट 2.0 को जापमिन रंग एडीसी मेचुका डीसी शियोमी डिपार्टमेंट व डोंग मिन्यान हे रोवा अरे मीटिंग को टोंगसोंग ते रूल में मोटकाट रंग लमखो पक्षाथिन हॉस्पिटल दिको चिलुम रूप गानंग थोमेन वा प्राइम मिनिस्टर गाजुन में अधि जंग थे जंगनी मा को पेपर लीक खो को ला जापमिंती गा में होंगजाप का अते में गाय का कामची मोत ते नंग जेल नंग ला शक्ति मजा रंगपन जंतर मंतर नंग नेटवर्क मासेट दिको अते में वीडियो नंग नंग हादंग नंग हे रंग मोट काट मिन गा में होंगजाप का अते में डिपार्टमेंट नंग अरे खो को मोट काट रंग गाय का थजा नंग नोक्ते खोबोत पे अको जो ला थोन बंगता अरो गा वांगो सोस्तिया अंगा गा ऑल इंडिया रेडियो ताते हे रंग पोएम वन थे विकोआ अरे पोएम पे रंग ते पे वांगो सोस्या पोएम मिन पे सकमाली सकमाली रुंदोंग थोंग हुन को नंगिन नंगजाप हन मजो लमता दी ले ओही ओ नंगा तंगची ना दी हुन जुन पकलक जावी दोंगलंग दाखोन को बा लमहिन की अचम अच्छु ओही ओ सकमाली रुंदोंग थोंग हुन को नंगिन नंगजाप हनमजो लमता धीले गुन अहो को अहो नंग नाही नंग योंग नंग वा नीपन लाड्री लमे नंग रंग नंग रुन डोंग रंग गुन बी लम छुन न्याप खोता वी लमे जट रियन डोंग वंग लमे चली बा चुई की हे थू मिन नंग तंग ची ना दी रुन डोंग सन चु खेमी ओही ओ सकमाली रुन डोंग थोंग हुन को नंग इन नंग जाप हनमजो लमता धीले डोंग लंग हे जो मिन डोंग वंग तंग ची हे रोंदोंग जंगची इन लिन जो बा चोसोक मिन अहो तोंग हुन मिन अहो अरो बा रोंदोंग दंग तुई की मामा रंग मामा दे दे ला रित मिन को मिन नंग नोक हे अचम अचत जा को लचु सु मिन नक दंग की नंग मी न्यान रोंदोंग अपे जो बा सक माली रोंदोंग थोंग हुन को नंग इन नंग जाप हन मजो लम ता दी ले अरो नंग नोक ते रोन यान से चोतात मंगन
1: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नुक्ते श्रोताओं का समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

0: दिल बोले तो
1: हाट हाट
2: हवा यार सौदा सौदा
0: ओहो
3: दोनों डील करा सील
0: टाइट वेरी टाइट।

अपुन जैसे टपोरी को क्या मालूम साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। लुक्का गिरी करके अपना टाइम पास होता है, बीड़ी पान चाय मिलता है, बस अपुन खुश। ये प्यार का लफड़ा लोचा काय को? काय को? अरे काय को रे।

0: उनका खोपड़ी सन का। कल्लन को पकड़ो और बोला, इधर आ शाने, तेरे को कयामत दिखाता हूँ। साले को इतना धोया अभी तक थोबड़ा वाक रहा है, और आज तक अपुन के साथ उसका 36 का आंकड़ा है। समझा? समझा क्या?
1: फिर हेमा का क्या हुआ?

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के रोन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम शाम की महफिल। दोस्तों, ईटानगर की शाम और यहाँ का मौसम ना बस दिल जीत लेता है। ऑफिस या कॉलेज का काम खत्म कर घर लौटने की जल्दी पर जब पहाड़ों के पीछे सूरज ढलता है और हल्की ठंडी हवा चलती है, तो दिल बस एक ही बात कहता है, थोड़ा सा ठहर जा बॉस, थोड़ा जी ले। आज की महफिल उन सभी लोगों के नाम जो दिन भर की भाग दौड़ के बाद अब थोड़ा सा सुकून ढूंढ रहे हैं। चाहे आप ट्रैफिक में अटके हो या अपनी बालकनी में बैठकर गरम गरम चाय एंजॉय कर रहे हो।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी के नगर केंद्र के और उन FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है जब हम किसी से बेइंतहा प्यार करते हैं ना, तो उसकी हर एक बात, उसकी हर एक अदा हमारे लिए एक कविता, एक नज्म बन जाती है। मेरा तो मानना है कि बरेली की गलियों से निकला ये गाना जब भी बजता है, ईटनगर के पहाड़ों में भी एक अलग सी महक घोल देता है। बरेली की बर्फी फिल्म का ये ट्रैक आरको साहब की बोल और उनकी आवाज में जो जादू है बॉस, ये गाना उनके सच में किसी की याद में आना तो पक्का है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी के नगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे, चाहती है दिल से दिल की बात। दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया है जब ईटानगर में शाम ढलने लगती है, पहाड़ों पर ठंडी हवा चलती है और हर तरफ एक अजीब सा सुकून छा जाता है, तब यह सन्नाटा भी आपस में बातें करता है। कहते हैं कि जब दो दिल दूसरे के करीब होते हैं तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। जीत गांगुली का म्यूजिक, रश्मि विराग की लिखे बोल और अरिजीत सिंह की आवाज में जो दर्द और गहराई है ना, वो सीधा दिल के आर पार निकल जाती है। तो जितने भी लोग हैं, तो दोस्तों एक लाइन है, कभी कभी कुछ ना कहना भी बहुत कुछ कहने के बराबर होता है।

दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टीनगर केंद्र के रून एफएम 103.1 MHz पे, चाहती है दिल से दिल की बात। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे साजे। दोस्तों, दिल में बात चल रही हो और जुबान बोलने से डर रही हो तो समझ लेना बॉस, चक्कर थोड़ा

बड़ा गहरा है। कहते हैं आशिकी का सबसे प्यार और कंफ्यूजिंग फेज पता है कौन सा होता है? जब आप किसी को चाहें तो लगता है, पर पूछें कि क्या मुझे प्यार है, तो आंसर मिलता है कि नहीं। वो फीलिंग ही नहीं होती जब दिल कहता है हाँ, दिमाग कहता है सुनो थोड़ा रुको। आशिकी 2 का ये आइकॉनिक ट्रैक अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल की आवाज में, जीत गांगुली का ये कंपोजिशन आज भी जब बजता है तो ईटानगर के पहाड़ों में भी रोमांस का एक नया मौसम ले आता है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर रोन एफ एम 103.1 MHz पे। सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखें, सपने वो हैं जो बस आपको सोने ही ना दे। दोस्तों, जब हम अपने किसी लक्ष्य, किसी ड्रीम के पीछे भागते हैं तो ये दिल की बेचैनी होती है, ये जो अंदर एक तड़प होती है कुछ बड़ा करने की, वही तो हमें आगे बढ़ाने की ताकत देता है। फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का ये सुपर इंस्पायरिंग ट्रैक अरमान मलिक की एनर्जेटिक आवाज और अमाल मलिक के शानदार म्यूजिक ने आज भी जब भी बजता है तो रगों में एक अलग ही जोश दौड़ जाता है। मनोज मुंतशिर के लिखे बोल हमें याद दिलाते हैं कि सपनों के पीछे दौड़ने के लिए थोड़ी बेसब्री जरूरी है।

0: जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शाम की महफिल। ये आकाशवाणी ईटानगर करुण FM 103.1 MHz है। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम स्पेशल प्रोग्राम। आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है, प्रस्तुत है एक विशेष कार्यक्रम। आज का ये एपिसोड सिर्फ एक बातचीत नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा है, साहस, समर्पण और अदम्य इच्छा शक्ति की। और ये कहानी है एक महिला, एक साइकिल और 7,800 किलोमीटर की यात्रा की, जो भारतीय सेना को समर्पित है। ये प्रेरणादायक यात्रा है मध्य प्रदेश की आशा मालवे की, राष्ट्रीय खिलाड़ी, पर्वतारोही और सोलो लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिस्ट, जिन्होंने अपने संकल्प से असंभव को संभव कर दिखाया है। और आज हमारे साथ मौजूद है वही अद्भुत व्यक्तित्व, जो साहस को केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन का मार्ग बनाकर जीती हैं। तो चलिए सुनते हैं आशा मालवीय से उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। आशा जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
1: आप सभी को नमस्कार, प्रणाम एंड जय हिंद।
0: आशा जी, हम जब साइकिलिंग की बात करते हैं, तो आपने 7,800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है, तो ये मन में कैसे आया?
1: इस 7,800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा से पहले मैं संपूर्ण भारत की एकल महिला साइकिलिस्ट हूँ।

0: और पूरे भारत में मैं 26,000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा है जो कि भारत के 28 राज्यों में कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं कन्याकुमारी से कारगिल, कारगिल से सियाचिन, सियाचिन से उमलिंगला, उमलिंगला से दिल्ली, दिल्ली से भोपाल की साइकिल यात्रा जो कि 17,500 किलोमीटर। आगे बढ़ते बढ़ते ये मेरी यात्रा का 7वां एक्सपीडिशन है जो कि जयपुर से 11 जनवरी को शुरू हुआ था और 11 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के 78वें सेना दिवस के ओकेजन में इसको फ्लैग ऑफ किया था साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांड सर एंड डिप्टी सीएम ऑफ राजस्थान ने। इसी यात्रा में मैं भारत देश के वेस्टर्न फर्स्ट विलेज जो कि गुहार गुजरात में है वहाँ पे 26 जनवरी को मैं गुहार होते हुए अरुणाचल पहुंची हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ पूरे अरुणाचल प्रदेश का एंड पूरे ईटानगर शहर का।
1: तो आपने ईटानगर की बात कही, अरुणाचल प्रदेश की बात कही, आप अरुणाचल प्रदेश और ईटानगर में पहले भी आ चुकी हैं, तो कैसा लग रहा है फिर से आपको अरुणाचल प्रदेश आने में?
0: सबसे पहले तो मैं पूरे अरुणाचल प्रदेश की बहुत बड़ी आभारी हूँ और सौभाग्यशाली भी मानती हूँ कि मैं अरुणाचल प्रदेश में आई हूँ। रही बात लगने की तो अरुणाचल प्रदेश जो होता है ना कि जैसे डेवलपमेंट की दृष्टि से देखा जाए या यहाँ का संस्कृति देखा जाए और यहाँ लोकल में लोगों को देखा जाए तो पहले भी बहुत अच्छे थे और आज भी बहुत अच्छे हैं और अरुणाचल में आके मुझे बहुत खुशी हो रही है।
1: पहले जब आप साइकिलिंग कर रही थी, लेकिन पहले आप एमेच्योर थी, शुरुआत दौर पे थी, तो पहले का एक्सपीरियंस और अब का एक्सपीरियंस में कंपेयर करें तो आप क्या डिफरेंसेस पाती हैं?
0: अगर पहले वाले मैं एक्सपीरियंस और आज का अगर एक्सपीरियंस की बात कहूँ तो जब मैंने शुरुआत किया था तो एक नॉर्मल जैसे होता है कि नॉर्मल इंसान किसी चीज की शुरुआत करता है वो पहला कदम था मेरे लिए जब मैं अरुणाचल प्रदेश में आई थी और उस टाइम पे मैं संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा में थी। और आज की अगर मैं बात करूँ तो पहले मुझे हर चीजें खुद जाके करनी होती थी और आज मेरे लिए ऑलरेडी हो जाती है जिस भी शहर में मैं जाती हूँ। तो यही फर्क है कि जो शुरुआत होती है ज्यादा मेहनत शुरुआत में लगती है और आज मुझे उतनी मेहनत नहीं लगती, लेकिन आज मुझे लगता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों से मिलूं। उस टाइम पे सब चीजों को करने में मेरा टाइम मतलब लगता था लेकिन आज टाइम नहीं लगता है, लेकिन बच्चों से मिलने के लिए मुझे अब बहुत ज्यादा टाइम मिलता है।
1: आप बोल रही हैं कि अब बच्चों से मिलने में बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलने मिलती होंगी, तो बच्चों से मिलने की बात करते हैं तो अब तक का जो जर्नी है, सफर रहा है, साइकिलिंग का जो सफर रहा है, किन राज्य के बच्चों से मिलकर आपको सबसे ज्यादा खुशी हुई या तो कह के वो एकदम मेमोरेबल रहा है?
0: मुझे हर जगह के बच्चों से पूरे भारत के बच्चों से मिलके अच्छा लगता है लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट के बच्चों से मिलके मुझे बहुत कुछ लर्न करने को मिलता है। और कहीं ना कहीं अगर नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को देखा जाए तो उसके यहाँ नॉर्थ ईस्ट में चीजें अनलिमिटेड होती है
1: जी
0: लेकिन यहाँ की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं अनलिमिटेड लाइफ है। यहाँ का जो कल्चर है वो इंसान को बहुत कुछ सिखाता है। यहाँ के छोटे बच्चे अपने कल्चर को लेके भी बहुत मतलब उनके अंदर डेडिकेशन रहता है। छोटे से बच्चे अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि छोटे से बच्चे में इतना डेडिकेशन, इतना डिसिप्लिन और इतना डिटरमाइंड अपनी चीजों को लेके, ये बहुत अच्छी बात है और यहाँ मुझे ये बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
1: जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये जो यात्रा है भारतीय सेना को समर्पित है, और जब हम भारतीय सेना की बात करते हैं तो ये नो योर आर्मी मेला से शुरुआत हुई थी आपकी यात्रा, इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं?
0: इससे पहले भी जब मैं सियाचिन की साइकिल यात्रा जो मैंने की थी उसमें भारतीय सेना ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। और उससे पहले जब मैं भारत यात्रा कर रही थी नॉर्थ ईस्ट में, मैं भारतीय सेना में पहली बार असम राइफल के डीजी जनरल नायर सर से मिली थी। तो कहते हैं ना कि भारतीय सेना के प्रति देश प्रेम एंड उनके सम्मान में मेरी ये साइकिल यात्रा है क्योंकि भारतीय सेना चाहे वो महिला सुरक्षा की बात करूं या देश की सुरक्षा की बात करूं या महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो जैसे कि हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर में चाहे वो
1: जी
0: भारतीय सेना हो, चाहे वो नेवल सेना हो, चाहे एयर सेना हो, उनके जो प्रदर्शन रहा है ऑपरेशन सिंदूर में वो कहीं ना कहीं हमारे पूरे देश के महिलाओं को इंस्पायर करने वाला कार्य भारतीय सेना ने किया है। तो कहीं ना कहीं उसी को लेकर मुझे लगता था कि भारतीय सेना के सम्मान में जैसे कहते हैं ना कि जिस भारत को हम नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट, इसीलिए मैंने इस यात्रा शुरू किया था। और
1: जी
0: मेरी यात्रा का उद्देश्य भी है नारी शक्ति, देशभक्ति, अदम्य साहस। और अगर अदम्य साहस की मैं बात करूं तो भारतीय सेना में तो है ही लेकिन हम देश के सभी नागरिकों में वो अदम्य साहस है और होना चाहिए।
1: जी जैसे कि आपने कहा कि ये जो यात्रा है, कि यात्रा है, ये एम्पावरमेंट के लिए भी है, तो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, जब कंपेयर करते हैं नॉर्थ ईस्ट के वुमेन के कंपैरिजन करते हैं तो क्या फर्क पाते हैं?
0: अगर नॉर्थ ईस्ट की वुमेन में अगर एम्पावरमेंट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी बहुत डेवलप है क्योंकि जहां मतलब मैं मिडिल में देखी हूँ, साउथ में देखी हूँ, जहां कहीं ना कहीं महिलाएं घर से बाहर जाने के लिए सोच रही हैं, यहाँ महिलाएं आधी से ज्यादा वुमेन एम्पावरमेंट में रोड पे ही देखती हूँ चलते चलते। चाय की दुकान जहां मतलब वहां पर मेल चलाता है, यहाँ पर फीमेल चलाती है। यहाँ पर अगर सब्जी से लेकर हो, चाहे वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी पोजिशन पे हो, चाहे वो प्रदेश के किसी अच्छे पद पर हो, वो कहीं ना कहीं ज्यादातर

0: ने महिलाओं को इधर देखा है तो एम्पावरमेंट की दृष्टि से ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट बहुत डेवलप है, जो
1: जी
0: कि अदर स्टेट में ऐसा नहीं है जो मैंने देखा है।
1: कुछ ऐसा किस्सा या कुछ इंसिडेंट जहाँ पे आपने इन वुमेन से बात की हो, किसी महिला से बात की हो?
0: हाँ, मैं महिलाओं से बात करते रहती हूँ तो मैं बोलती हूँ, पूछती हूँ कि दिन में कितने पैसे मिलते हैं, कितने घंटे काम करना पड़ता है, तो बताती है कोई घंटे वंटे का काम नहीं, हमारा काम है, हमें अच्छा लगता है करके। और जहाँ मतलब एक मिडिल में देखा जाए, कहीं मैं एमपी में, गुजरात में ऑलरेडी गई हूँ और यूपी में गई हूँ, बिहार में गई हूँ, अगर वहाँ पूछू महिलाओं से तो बस वो कहीं ना कहीं मेरे को परेशान ही दिखती है। और यहाँ जो खुशी मुझे दिखती है, पीस हैप्पीनेस जो उनके चेहरे पे दिखती है, ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही कम देखने को मिलती है।
1: यात्रा की बात करते हैं, साइकिल यात्रा की बात करते हैं, साइकिलिंग की बात करते हैं, तो फाइनेंस जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपके जो ये यात्रा के लिए कुछ स्पॉन्सर मिले हैं या तो किसी ने फाइनेंस किया है?
0: इस यात्रा में मुझे SBI ने कुछ सपोर्ट किया था। और रही बात फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली वैसा कोई स्पॉन्सर नहीं है, लेकिन भारतीय सेना ने जो मेरे लिए किया है, या किसी स्पॉन्सर तो छोटी सी बात हो गई, लेकिन उनसे भी बड़ा कार्य मेरे लिए भारतीय सेना ने किया है।
1: महिला साइक्लिस्ट की बात करते तो आपकी तरह बहुत बहुत सारी महिलाएं साइक्लिस्ट है, आप में वो क्या खासियत है जो उन लोगों से अलग करती है?
0: मुझे लगता है कि मेरे लिए मेरी साइकिल ही सब कुछ है। और मैंने कहीं ना कहीं, अभी वर्ल्ड साइकिलिंग डे था तो उसके लिए मैंने अपनी साइकिल के बारे में लिखा था कुछ लाइनें मतलब। और रही बात अलग बनाने की, तो अलग बनाने की बात यह है कि मैं वर्ल्ड का वो फीमेल हूँ जिसने कन्याकुमारी से सियाचिन तक की साइकिल यात्रा की। और जिस भारत को हम कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर, लेकिन मैंने इस भारत की डेफिनेशन अपनी साइकिल से ही चेंज कर दी, अपनी साइकिल के साथ। जिस भारत को, आज के भारत को, आज के नए भारत को मैं कहती हूँ कि कन्याकुमारी से सियाचिन जिस भारत को मैंने देखा है, इसीलिए मुझे लोगों से कुछ अलग बनाती है। और मेरा काम करने का तरीका भी कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा अलग।
1: इंडियन पीपल की बात करते हैं, इंडियन प्लेसेस, डिफरेंट स्टेट्स की बात करते हैं, तो ऐसा किस्सा किसी स्टेट में घटा हो जो आपके लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो?
0: किस्सा तो नहीं, हाँ ऐसी कुछ चीजें थी, जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, तो मैं किसी और स्टेट की नहीं, मैं अपने स्टेट की बात ले लेती हूँ, कि जब मैं एक साइकिल के लिए अप्रोच कर रही थी कि मुझे कोई एक साइकिल दे दे, लेकिन वो साइकिल भी मुझे इसलिए नहीं मिल रही थी कि जब भी मैं उनके पास मिलने के लिए जाती थी तो मुझे पूछते थे आपकी टीम में कितने लोग हैं। मेरी तो टीम छोड़िए, मेरे घर में मेरी माँ, मेरी एक बहन है, तो मैं बताती थी कि सर मेरी कोई टीम नहीं, मैं अकेली इस यात्रा को करना चाहती हूँ। तो अकेली वाली जब उनके सामने मैं अपनी बात करती थी, तो उनके लिए इतना मुश्किल था कि अकेली लड़की समझ के मुझे कोई एक साइकिल देने के लिए तैयार नहीं था। बट फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए कि जब हमारी जिंदगी में वो फेस आता है कि अकेले हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि मैं करूँ या छोड़ दूँ, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिसको लगता है कि बस ये मेरा डिसीजन है, मैं ही इसमें डिसीजन मेकर हूँ, तो मैं कर लूंगी।
1: अभी आपने कहा कि जिस तरह से जब शुरुआत में आपके पास साइकिल के लिए भी पैसे नहीं थे, तो अब लोग आपको पहचानने लगे, जानने लगे, आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो लाइफ में क्या चेंजेस आया?
0: लाइफ में तो कुछ नहीं, कल भी मैं एक वे में थी और आज भी एक वे में हूँ। और रही बात लाइफ में नहीं, आपके काम को लेकर आपके अंदर चेंज आना चाहिए। आपका जो काम है, अगर पहले अगर मेरा काम छोटे लेवल पर हो रहा है, तो इस काम को मैं बड़े लेवल पर कैसे कर सकती हूँ? देश के प्रत्येक युवाओं तक मेरे काम को लेकर मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ, कैसे उनको मोटिवेट कर सकती हूँ, कैसे मैं उनसे कुछ सीख सकती हूँ? तो मेरे काम में यही अंतर है कि पहले अगर मैं कम लोगों से मिलती थी, तो अब मैं ज्यादा लोगों से मिलती हूँ।
1: आपका जो यात्रा है, लोगों से मिलना होता है शहरों में, गांव में, या तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज हुआ, तो जब उनको पता चलता है कि आप एक महिला साइक्लिस्ट हैं, तो उनका जो रिएक्शन होता है, उनकी जो प्रतिक्रियाएं होती है, किस तरह की होती हैं?
0: हमेशा कहते हैं ना कि काम हमेशा इतना बड़ा हो, या काम आपका वैसा हो कि जब आप अपने काम के बारे में किसी को बताएं या आपके काम के बारे में लोगों को पता चले, तो उनको लगे ऐसा कर लिया क्या, ऐसा हो गया क्या। तो जब भी मैं बोलती हूँ कि मैं 64,000 किलोमीटर साइकिलिंग पूरे भारत में कर चुकी हूँ, तो वो सोचते हैं कि 64,000 किलोमीटर दोबारा से जब उनके मुंह से निकलता है, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ सर मैंने कर लिया है। तो लोगों का यही रिएक्शन होता है कि आपका काम इतना बड़ा हो कि लोग आपके काम के बारे में जानने के बाद एक बार सोचे कि हाँ ऐसा हो गया है क्या। और रही बात उनके रिएक्शन की, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, कि मैं किसी शहर में जा रही हूँ, वहां पर इतनी भीड़ में कहीं ना कहीं मैं अपनी साइकिल के साथ हूँ, और मैं अपनी साइकिल के साथ वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में या वहाँ के लोकल लोगों से मिल रही हूँ।
1: साइकिलिंग करते हो, कुछ चैलेंजेस कभी आया कि हाँ मुझे लगा कि हाँ नहीं मुझे नहीं करना है, या तो इसे रोक देना है, इस तरह के कुछ निगेटिव थॉट्स आए हैं?
0: जब भी मेरे मन में कभी ऐसा आता है कि ये काम बहुत डिफिकल्ट है या बहुत मुश्किल है, तब मुझे मेरी माँ का वो चेहरा याद आता है कि जब वो पूरे दिन मजदूरी करने के बाद शाम को घर लौट के आती थी, तो उस चेहरे के भाव को सिर्फ मैं फील कर सकती हूँ, उसको एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जिस धूप में मैं पूरे दिन खड़े नहीं हो सकती, उस धूप में मेरी माँ मजदूरी कर सकती है। तो मुझे मेरा कभी भी कोई भी काम मेरी माँ के काम के सामने कभी बड़ा नहीं लगता है। मेरी माँ ने जो मेरे लिए किया है, वो हमेशा मुझे वो चेहरा याद रहता है, और जब भी उस काम को लेकर, जब भी

0: लाइफ में कोई मुश्किल आती है तो मैं चेहरा फील करती हूँ, तो मेरे लिए मेरा सारा काम आसान हो जाता है।
1: जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप जो भी इंस्पिरेशन लेती है, जितना भी मोटिवेटेड रहती है, वो अपनी माँ के कारण रहती है। कुछ ऐसा इंसिडेंट कभी आपको लगे कि हाँ, आप खुद ही, क्योंकि ये जो जर्नी है ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, कहीं कुछ इस तरह के कुछ सोच आया कि हाँ, इनसिक्योरिटी, सेफ्टी का कुछ इशू आया हो?
0: सेफ्टी को लेकर तो कभी भी मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं आया, क्योंकि जिस भारत को कहते हैं ना कि भारत एक महान देश है, वो भारत कहते हैं कि महान देश है, मैंने तो हजारों महानता इस भारत में देखी है। कि जहाँ के जब मैंने शुरू किया था तो एक नॉर्मल साइकिल, एक पैर कपड़े और 5,000 रुपए लेके मैं निकली थी मेरे घर से। तो लोकल में कहीं चाय पीने के लिए कहीं रस्ते में रुकती थी तो वहाँ के जो लोकल के लोग होते थे, जो गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, जो दिन के 200-400 रुपए कमाते थे, मेरी साइकिल पे मेरा नाम वाम देखने के बाद, मेरा उद्देश्य देखने के बाद जब मैं वहां से निकलती थी तो वो भी निकलते थे, तो उनकी पॉकेट में जितने पैसे होते थे 200-400-500 रुपए, और मुझे देकर बोलते थे कि आपकी राइड के लिए कंट्रीब्यूट हम कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं अगर महानता की बात करूं तो मैंने ऐसी ऐसी महानताएं देखी, और रही बात प्रॉब्लम्स की, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब हमारा फोकस प्रॉब्लम पे होता है तो हमें सिर्फ प्रॉब्लम दिखती है, और जब हमारा फोकस गोल पे होता है तो हमें गोल दिखता है। तो मैं उन्ही लोगों में से हूँ जिसका फोकस हमेशा अपने गोल पे होता है।
1: आगे का किस तरह का प्लान है कि इस ये एक्सपीडिशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप क्या करने की सोच रही हैं?
0: मैंने अरुणाचल के बारे में बहुत कुछ सुना है और कुछ चीजें मैंने अरुणाचल की देखी भी हैं, तो मैं अगला एक्सपीडिशन मेरा 15 अगस्त को तेजपुर टू तवांग शुरू करने वाली हूँ, और तवांग एक्सेस के बारे में मैं तवांग में साइकिलिंग करने जाने वाली हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं उस चीज को लेकर भी बहुत खुश भी हूँ और बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि तवांग जो हमारे वार मेमोरियल है, जहाँ 1962 में जो वार हुए थे इंडिया चाइना के, वहां मैं जाऊंगी, वहां के वार मेमोरियल पे विजिट करूंगी, वहां के जहाँ हमारे भारतीय सेना के शहीदों ने अपनी जान का बलिदान दिया इस मातृभूमि के लिए, उनको जाकर वहां पर नमन करूं, और जो अरुणाचल की खूबसूरती है वो अपने शब्दों में बयां करूं, उस चीज को मैं देखूं, महसूस करूं और लोगों को बताऊं कि अरुणाचल कितना खूबसूरत है और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा सूरत।
1: जी, तो ये साइकिलिंग के जरिए आपने कह सकते हैं कि आपने पूरा भारत सफर कर लिया है, तो कुछ इस तरह की सोच रही है, कुछ बुक निकालना हो, किताबें कुछ लिखनी हो, कुछ कर रही है या होने वाली है कुछ?
0: मेरी बुक अभी दिसंबर या जनवरी तक पब्लिश होने वाली है। मैंने खुद भारत यात्रा पे किताब लिखी है, और बुक का नाम तो बुक आने के बाद ही पता चलेगा। मैंने कुछ कुछ नाम भी सोचा है जो मेरे नाम से रिलेटेड ही है, तो मेरी खुद की बुक पब्लिश होने वाली है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम आशा करेंगे कि एक कॉपी हमें भी मिल जाए।
0: बिल्कुल, पूरे मैं कॉपी भेजूंगी अरुणाचल में, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है।
1: आशा जी, जब हम साइकिलिंग की बात करते हैं, साइकिलिंग जो स्पोर्ट्स है, ये आजकल जो है उभर कर आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं स्पोर्ट्स को?
0: चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो, पहले तो हम आपका या मेरा मन उसमें लगना चाहिए। दूसरी बात, साइकिलिंग साइकिलिंग एक फुल बॉडी वर्कआउट है, और रही बात जहां आजकल फिजिकली इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मेंटली भी प्रॉब्लम्स हैं, तो कहीं ना कहीं अगर फिजिकली फिट रहना है तो साइकिल के साथ साथ मेंटली भी हमें, जब हम चीजें एक्सप्लोर करते हैं तो हमारा दिमाग रिफ्रेश होता है। और मैंने कहीं ना कहीं किसी से सुना था कि मैम, अगर आप माइंड को फ्रेश करना है तो चीजें देखिए, और फिजिकल को फिट रखना है तो आप अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। तो वही सब चीजें हैं लाइफ में, और साइकिलिंग एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स भी है जिसको करियर बना सकता है आजकल, तो इसको ओलंपिक में हो गया, एशियन गेम्स में हो गया, बहुत सारी जगह भी एड ऑन किया गया है। तो जिसको भी साइकिलिंग करना है वो शुरू कीजिए, शुरुआत में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, धीरे धीरे जब करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छा लगने लगेगा।
1: जब कोई युवा कोई भी साइकिलिंग करना चाहते हैं, उसे आप एक एडवेंचर स्पोर्ट्स के तौर पर लेना चाहते हैं, तो युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं सबसे पहले तो युवाओं को यही कहना चाहती हूँ कि जिंदगी में चाहे जितनी भी सारी समस्याएं, कभी भी किसी समस्या से मत घबराइए, हर समस्या का सामना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, और उस समस्या का सामना करके आप अपनी मंजिल पे पहुंचे, क्योंकि मंजिल पे पहुंचना इम्पोर्टेंट है, वो समस्या नहीं। और दूसरी चीज, आपकी जिंदगी का आप अपना एक गोल बनाइए, उस गोल के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि जब तक आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते तब तक आपको रुकना नहीं है। और हमेशा लास्ट में यही कहती हूँ कि कुछ मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, कि कुछ मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें गलत बात है, तो आपको हमेशा कोशिश करते रहना है। और कहीं ना कहीं सक्सेस जो होती है ना, जिसको लगता है कि सक्सेस 1 महीने में 1 साल में मिल जाती है, सक्सेस 1 महीने में 1 साल में नहीं, वो सालों की मेहनत होती है, और सालों मेहनत करने के बाद एक दिन आप जरूर सफल होते हैं। तो आप मेहनत कीजिए और एक दिन सफल बनिए।
1: आपको क्या लगता है कि जब हम एंटायर नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो टूरिज्म की बात करते हैं, टूरिज्म पोटेंशियल कितना है?
0: जैसे कि इंडिया में मैंने देखा है कि जहाँ किसी पार्टिकुलर एक जगह में दो चार ही देखने की जगह होंगी, या एक दो भी बाई चांस कभी कभी मिलती है किसी जगह पे, तो कुछ नहीं होता देखने के लिए। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ लोगों को आज तक पता ही नहीं है कि हम यहाँ इतनी सुंदर जगह, जैसे वलोंग, जिस वलोंग के बारे में आज हम बात करते, तो मैंने कहीं ना कहीं ऑलरेडी सुना है वलोंग के बारे में कि बहुत

0: खूबसूरत रास्ता और बहुत खूबसूरत जगह हैं। बलोंग ही नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल का तवांग एक्सेस बहुत खूबसूरत है, जहाँ बहुत सारे बाइकर्स भी जाते हैं। और मैं कहती हूँ जहाँ लोगों को पता नहीं है वो एक बार देखिए नॉर्थ ईस्ट की खूबसूरती को और महसूस कीजिए। एंड मैं तो ऑलरेडी ऑलमोस्ट पूरा इंडिया कवर कर चुकी हूँ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के जितना सुंदर जगह मैंने कहीं देखा नहीं है। लेह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट मुझे बहुत खूबसूरत लगता है।
1: जी, ये तो बात हुई कि आपने जिस जिस प्लेसेस में घूमी उनके बारे में, क्योंकि आप मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश की बात करें तो आप क्या कहेंगे?
0: मैं मध्य प्रदेश की बात कहूँ तो जहाँ महाकालेश्वर टेम्पल है, जहाँ लोग अपनी विश लेके जाते हैं कि भगवान मेरा ये विश पूरा कर दे, मैं कहती हूँ कि आप विश पूरी हो जाएगी बहुत अच्छी बात है। जहाँ नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है हमारे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश कहते हैं भारत का दिल है। मतलब मैं उस जगह से आती हूँ, तो मैं बहुत बड़ी आभारी ऊपर वाले की भी कि मैं भारत के दिल से आई हूँ। और मध्य प्रदेश भी पसंद है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट में जो पीस और हैप्पीनेस मैंने देखी है ना, उतनी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में नहीं देखी है। तो इसलिए कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट भी मुझे उतना ही पसंद है जितना मेरा मध्य प्रदेश।
1: तो आकाशवाणी के जरिए आप अपने लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को क्या कहेंगी?
0: मैं मध्य प्रदेश के लोगों में सबसे पहले मेरी माँ, जिनकी मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ, मेरी बहन जो हमेशा मेरे लिए मेंटर का काम की है, और एक थे जिन्होंने मुझे बचपन में सपोर्ट किया जब मेरे पास लाइफ में कुछ नहीं था, श्री ओम प्रकाश जी शर्मा जी, जो कि एमपी पुलिस में थे पहले, अभी तो नहीं, अभी तो रिटायर हो गए। सो मैं उनको पापा बोलती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना कुछ करने के लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। एंड मध्य प्रदेश ने मुझे जो सिखाया है, जो दिया है, जहाँ की मैं बेटी हूँ, तो पूरे मध्य प्रदेश की भी मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। एंड पूरे देश की तो आभारी हुई, क्योंकि पूरे देश ने मुझे जो दिया है ना, वो किसी पार्टिकुलर किसी जगह से या किसी एक पर्सन ने नहीं, वो पूरे भारत ने मुझे दिया है। तो मैं पूरे भारत देश की भी, सभी माओं की, सभी भाइयों की और सभी की बहुत बड़ी आभारी हूँ।
1: आशा जी, आपने अपने माँ के बारे में तो बताया कि किस तरह से वो पहले क्या करती थी, फिलहाल आपकी माँ क्या करती हैं?
0: मेरी माँ के लिए मैंने खुद ही जॉब वगैरह करके, मैराथन वगैरह करके, मैंने इंडिया की कम से कम 25 से ज्यादा मैराथन की होगी। मेरी मदर के लिए मैंने एक छोटा सा घर भी बनाया है, और मेरी बहन की शादी करने के लिए मैंने जॉब वगैरह की है। 1-1.5 साल तक जॉब करके बहन का शादी भी किया। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारियां होती है, मैं सभी युवाओं को यही कहना चाहूंगी कि आप किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने कभी भी गिव अप मत कीजिए, हर जिम्मेदारियों को पूरा कीजिएगा। और मेरी मदर अभी मेरे घर पे ही है, एंड मुझे लगता है कि हमारे माँ बाप के लिए हम बच्चों से, जैसे हम कहते हैं ना कि किसी स्वर्ग की या किसी नर्क की बात करते हैं, तो बच्चा अगर अच्छा काम करता है अपनी लाइफ में, तो उससे बड़ा माँ बाप के लिए कोई स्वर्ग नहीं होता है। तो मैं सभी बच्चों से यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी में ऐसा काम कीजिएगा कि जो आपके माँ बाप को यहीं जीते जी स्वर्ग दिखे।
1: हमने बातें की कि आप लोगों से मिलती है, आम लोगों से भी, महिलाओं से मिलती है, बच्चों से मिलती है। जब हम बड़े लोगों की बात करें तो इस यात्रा के दौरान आप किन किन लोगों से मिली है और उन्हें मिलकर आपका जो परसेप्शन है किस तरह से चेंज हुआ?
0: अभी तक अगर देखा जाए तो मैं भारत देश के कम से कम 7 लाख प्लस स्टूडेंट, 5 लाख फीमेल, 2 लाख ऑफिसर्स एंड 26 चीफ मिनिस्टर सर, 28 के 28 गवर्नर सर से मैं मिली हूँ, और लास्ट ईयर मैं तीनों सेनाओं के चीफ सर से भी मिली थी। तो जो कहीं ना कहीं मैंने उनसे मिलके जो सीखा है, जो लर्न किया है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमेशा आपको जिससे भी आप मिलते हो, जो भी जगह आप देखते हो, हमेशा आपको सीखना है। और सीखने की एक कला होती है, इसको जिंदगी में कभी भी रुकने मत देना, इसमें कभी भी फुल स्टॉप लेकर मत आना। और सबसे अच्छा कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ, आज मिलके अगर कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि पहली बार मुझे लाइफ में लग रहा था कि मैं अपनी विश बताने से पहले वो सारी पूरी हो रही है, तो पहली बार अगर भारतीय सेना में देखा जाए तो जनरल नायर सर थे जो असम राइफल में डीजी सर थे, और अभी जो प्रेजेंट में हमारे भारतीय सेना के चीफ सर थे, जिनसे मैं कहीं ना कहीं ये इससे पहले उधमपुर में थे सर, तो मैं सर से वहां मिली थी। और अभी तक तो मैं सभी से मिल चुकी हूँ, ऑलमोस्ट भारत के, ऑलमोस्ट पूरे भारत से। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि मैं हमारे देश के पीएम सर से एंड प्रेसिडेंट मैम से भी मिलना चाहूंगी दोबारा से, जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस है उनके साथ भी शेयर करना चाहूंगी।
1: जी, तो हम आशा करते कि आपके जो अधूरे सपने वो भी जल्दी पूरी हो जाए। अंत में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगी?
0: मैं इसके पहले तो आकाशवाणी ईटानगर की मैं बहुत बड़ी आभारी हूँ कि यहाँ मुझे दोबारा आने का मौका मिला। एंड आप सुनते रहिए, और यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीजें या ऐसी हस्तियां या ऐसे लोगों से मिलने का, सुनने का मौका मिलेगा कि जो शायद आपने कभी उनके बारे में नहीं जाना होगा। एंड थैंक यू सो मच। एंड आकाशवाणी ईटानगर को सुनते रहिए।
1: तो आशा जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और हमारे श्रोताओं के साथ अपनी इस यात्रा के बारे में साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
1: ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश की राष्ट्रीय खिलाड़ी पर्वतारोही और सोलो लॉन्ग डिस्टेंस साइक्लिस्ट सुश्री आशा मालवीय से ली गई एक भेंट वार्ता। उनकी कहानी हमें सिखाती

है कि सीमाएं शरीर से नहीं मन से तय होती है। हम आशा करते हैं कि सुश्री आशा मालवीय की कहानी ने आपको भी प्रेरणा दी होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नए मेहमान और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे स्पेशल प्रोग्राम, ये आकाशवाणी ईटानगर का रून एफ एम 103.1 MHz है। दोस्तों अभी से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का समाचार।

0: Prime Minister Narendra Modi kom Team India am Airupa igumdo pekum lungmun gato. Arunachal Pradesh solo governor Keti Parnakbu Avotani Vidya Nikitan School am lak anjiko bito. Abar sim school library delok school am adingrupa ibumdopa bibumto. Governor Keti Parnak Lukan Sidola Kitab Pori Luna Amiko Delok Library Lo Kitab Bojepe Kapa Lagidung Student Kedar Puram Kamo Madop Delok Kitab Available Mul Student Kedar Pori Iling Yai Delok Knowledge Kom Bojepe Paye Lalukanto Chief Minister Pema Kandu Lang Governor Keti Parnak Bunyi Lok Bhavan Itanagar Lo Karik Sito Karik Sidola State Solok Development Ipanam Delok Mubom Sinam Project Legang M. Lubosito Natural Disaster Climate Change Problem Panam Kedar M. Kom Solution Ko Lado Pa Discussion Iposito Governor Keti Parnak Bu CM Pema Kandu Ka Team Arunachal Pradesh M. 10 years Service Binam M. Airup Koito Koito La Ludona Gikana 10 years Solo State Si Bojeko develop kai, especially road, education, health, tourism, connectivity, delok rural development ekom boje rupe develop kai. Delok seva apka diwar program sim kom boje rupe koit item to. Prime Minister Narendra Modi ludone paper leak irong am. Polo Puni Kolang Hap Moina Lok Ila Government Exxon M. Ibom Dung Delok Seko Boludi Paper M. Leak Tondem Amikidar M. Jail Lo Leak Tung Delok Governor Government Mudrupa Lubom Lubom Dunam Solo Student Kidar M. Ditak Atelkom Los Momai Exam M. Manarupa Kondak Bodukupa Lukanta Prime Minister Narendra Modi Ludone Paper Leak Inamsi Aming Aseng Mana Ati ko solo lak student delok student lok ana abu kom duk pamodungam lalukanto. Prime Minister Narendra Modi bi department kidar am ludone past track court am lagan rupa proposal idopa lubomto. Delok proposal sim cabinet lo lubomdope barok bomdola cabinet lok suggestion irongam final decision am laye am lalukanto. Sim kalutate devo. Supak adi lutadam tarongam miriponungam irobdum. Keraya lumpa maktal pertin ke parti lok ponung kotat pai.
1: जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के रोन एफएम 103.4 मेगाहर्ट्ज पे। अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के कलाकार, जहां हम बात करेंगे बॉलीवुड के मशहूर गीतकार मनोज मुंतशिर के बारे में। दोस्तों, मनोज मुंतशिर का जन्म 1976 को उत्तर प्रदेश के अमेठी के गौरीगंज में हुआ था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, तेरी गलियां कौन तुझे जो प्यार करेगा, जैसे गानों को अपनी कलम से सजाने वाले गीतकार शायर संवाद लेखक मनोज मुंतशिर ने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। बाहुबली के शानदार डायलॉग्स लिखने वाले गीतकार मनोज मुंतशिर आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उन्हें कोई भी नहीं जानता था। मनोज मुंतशिर को बचपन से ही लिखने का शौक था। अपने लेखन को बेहतर बनाने के लिए मनोज कई कवियों की किताबें भी पढ़ा करते थे। सातवीं आठवीं कक्षा में उन्होंने दीवाने गालिब किताब पढ़ी, लेकिन उर्दू नहीं आने की वजह से उन्हें कुछ समझ नहीं आया। फिर एक दिन मस्जिद के नीचे से मनोज मुंतशिर ने 2 रुपए की उर्दू की किताब खरीदी और उर्दू की तालीम हासिल की।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 MHz पे। दोस्तों, स्नातक की पढ़ाई पूरी होने के बाद मनोज जेब में 700 रुपये लेकर सन 1999 में मुंबई आ गए। काम की तलाश में दिन और पैसे दोनों खर्च होते गए। एक दिन मनोज की मुलाकात अनूप जलोटा से हुई। अनूप जलोटा ने मनोज को मौका और काम दोनों दिया। मनोज ने अनूप जलोटा के लिए भजन लिखे और पहली बार 3,000 रुपये की कमाई की। हालांकि इसके बाद भी मनोज के संघर्ष के दिन खत्म नहीं हुए। मुंबई के फुटपाथ पर कई रात बिताने वाले मनोज को साल 2005 में कौन बनेगा

0: जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम का। ये आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। दोस्तों, प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो हेलो फरमाइश
2: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
3: जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम।
2: जी
3: राधे राधे,
2: राधे
3: है
2: राधे।
3: ना?
2: जी जी जी
3: और हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं, है
2: बिल्कुल।
3: ना?
2: जी जी जी बिल्कुल अच्छा हूँ मैं।
3: और मैं अनूप कुमार भट्टाचार्य बात कर रहा हूँ। मेरा गांव का नाम है राम कृष्ण नगर, डिस्ट्रिक्ट है श्री भूमि, आसाम से ताल्लुकात है।
2: जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनूप दा, और
3: जी
2: आशा करते हैं आप भी
3: थैंक यू
2: बहुत ही
3: सर।
2: बढ़िया होंगे।
3: जी।
2: ओके
3: तो
2: जी।
3: बातों से दिल जीतना सभी का, अच्छे दोस्त अच्छी संगत होगी, सफलता आपके कदमों में, चेहरे पर मुस्कान और सुनहरी रंगत होगी, है ना?
2: क्या बात है। जी जी अनूप दा, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। जी,
3: जी। और
2: पॉजिटिव
3: आज
2: वाइब्स।
3: इस कार्यक्रम में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
2: बिल्कुल। जी,
3: फिल्म का नाम है चरित्रहीन।
2: चरित्रहीन। ओके।
3: हाँ जी। और गाने का बोल, फिल्म का

0: होती, ऐसे करके गाने हैं
1: ओके जी,
0: जी। और ये गाने का किशोर कुमार जी ने गाया है, साथ में लोते जी है
1: ओके
0: शायद।
1: जी,
0: और इस गाने को मैं पहले डेडिकेट कर रहा हूँ हमारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, जिसका नाम है बके बागेरा जी,
1: थैंक यू जी,
0: और सेकेंडली हमारे नूरी मैडम, और बोलिए थर्डली हमारे बहुत अच्छे दोस्त
1: जी,
0: जिगर के टुकड़े हैं, बोलिए आप कैस कीजिए
1: आपके जिगर का टुकड़ा
0: जी, बहुत अच्छे दोस्त
1: ओके।
0: मेरा, बोलिए गेस कीजिए
1: आपके तो बहुत सारे दोस्त हैं अनूप दा
0: ना, बोलिए आप एकदम क्या कहो, मतलब आप एकदम परीक्षा में पास हो जाएंगे, 100 में 100 सिक्योर करेंगे,
1: जी, आपने तो
0: बोलिए
1: मुझे बहुत ही मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि मैं जानता हूं आपके बहुत सारे दोस्त हैं।
0: ना दोस्त है, लेकिन उसमें जिगर के एक दोस्त है बहुत।
1: लोकेंद्र वर्मा,
0: जी, आपने सही बोला,
1: क्या बात है,
0: थैंक
1: क्या
0: यू
1: बात
0: थैंक यू थैंक यू,
1: है। तो
0: बहुत
1: मैं
0: अच्छे
1: परीक्षा में
0: दोस्त है,
1: पास हो गया
0: पास हो गया। अरे बके
1: ओके
0: बागेरा जी।

0: बात
1: जी, बहुत बहुत
0: एकदम
1: धन्यवाद
0: बाकायदा हो जाएंगे,
1: जी।
0: क्योंकि बहुत अच्छे हैं आप और
1: थैंक यू
0: हमारे लुकेंद्र वर्मा जी बहुत अच्छे हैं,
1: जी जी
0: बहुत
1: जी
0: दिलदार आदमी है,
1: बिल्कुल
0: बहुत अच्छे सोच के विचार रखते हैं
1: बिल्कुल सही कहा जी जी जी
0: जी। और फोर्थली हमारे अविनाश जी है आप धर्मनगर से, श्रीकांत जोशी जी, बसंती लाल सूर्यवंशी जी, विजय सिंह लखेरा जी, और कश्मीर से पुरुषोत्तम कुमार जी है, और है हमारे उसका नाम पापन आचार्या, प्रेमजीत चक्रवर्ती है, और हमारे धर्म पत्नी है सुतपा भट्टाचार्या, और ढेर सारे श्रोता अभी सुन रहे हैं इस मन भावन प्रोग्राम आकाशवाणी ईटानगर के सबके लिए। तो चलिए दोस्त,
1: जी
0: बातों को यहीं पे विराम देता हूँ।
1: जी
0: बहरहाल
1: जी
0: आप
1: जी
0: अच्छे रहिए, हमारे श्रोता भाई बहन अच्छे रहे, ये हमारा परम पिता से प्रार्थना
1: जी
0: है।
1: जी तो अनुपदा कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार,
0: नमस्कार।
1: मैं अमर बसुमतारी है, रंगापरा सोनीतपुर असम से।
0: जी आपकी हंसी खुशी बहुत ही बेहतरीन आवाज को मैं बिल्कुल पहचानता हूँ।
1: बात होते तो और भी खुशी बढ़ जाते है। आपसे बात करने के लिए बहुत देर से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज लाइन मिल गया।
0: जी जरूर मिलेगा, आप दिल से कॉल करते हैं तो जरूर।
1: अगर जो ईटानगर में कॉल लगता है तो मेरा लोतरे जीत गया ऐसा लगता है।
0: अरे वाह क्या।

0: बात है
1: हाँ
0: जी।
1: जी। और हमारे असम में अभी धूप खिली हुई है, सुबह को
0: अच्छा।
1: बारिश हुआ था रात के 2 बजे से, जैसे सुबह को 8:30 बजे तक बारिश देते रहते हैं, और जैसे 10 बजे से लेके अभी बहुत काफी धूप दे रहे हैं,
0: जी हमारे यहाँ
1: बहुत
0: पे
1: गर्मी
0: बारिश तो
1: चल
0: हो
1: रहा
0: रही
1: है।
0: है जी। हमारे यहाँ पे धूप अभी खिलानी है।
1: अच्छा।
0: ओके जी। तो आप कहाँ
1: और
0: से बोल रहे हैं अभी,
1: मैं
0: घर से?
1: इस खुशी से मैं एक रिश्ता मूवी से एक गाना सुनना चाहूंगा, कुमार सानू और अलका याग्निक का बेहतरीन आवाज में,
0: एक रिश्ता।
1: और गाने की बोल है दिल लगाने की सजा तू ना देंगे।
0: ओके
1: हाँ ये गाना, और मैं बहुत सारे दोस्तों को डेडिकेट करना
0: जी
1: चाहूंगा,
0: जी बिल्कुल।
1: सबसे पहले आपको
0: थैंक
1: और
0: यू
1: नूरे मैम को और
0: जी।
1: आरजी कविता को, आरजी कारबरेबा को, और पूरी हॉरर फिल्म की आरजी टीम को, और ईटानगर के सभी आरजी को, और हमारे दोस्त रहेगा भाईकोन मुंडा, बिमल बसुमतारी, रमेश पात्रो, रोनू पात्रो, लाकी, और हमारे जगेंद्र रोपी, देवाशीष हजूरिका, नीलोत पोल द्वारा, सौरभ द्वारा, और पुतुल बरुआ, और हितेंद्र दास, रुखबली मेथा, और हमारे प्रेमजीत चक्रवर्ती है, अनुप कुमार भट्टाचार्य जी है, और छुटापा भाभी है, और देवोजीत दास है, और हमारे ये त्रिपुरा से है अविनाश तेली, और आशुतोष देवनाथ, संगीता देवनाथ, और भी भगवान सिंह परमा रहेगा, और रमेश प्रजापति रहेगा, और राकेश रहेगा, दिलीप पाउजा, और मंगीलाल चांडेल, केसी सिंह, पैम सिंह सोशोडिया का रहेगा, और तानोश्री को भी डेडिकेट रहेगा।
0: ओके। तो अमल जी, जिस तरह से आप हमारे अरुण एफएम के आरजेस का नाम ले रहे थे, इससे पता चलता है कि आप बहुत ही सुनते हैं आकाशवाणी ईटानगर के। हेलो
1: जी, और एफएम
0: अरुण
1: सुनते
0: एफएम
1: हैं,
0: को।
1: लेकिन और रेडियो ऑन डिमांड प्रोग्राम में एसएमएस करते रहते हैं, और रिक्वेस्ट का
0: अच्छा
1: गाना सुनने के लिए मिलता है, जो भी गाना
0: ओके।
1: फरमाइश करते हैं इसको पूरी करते हैं, इसलिए और एफएम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और एफएम के इस प्रोग्राम को और भी समय बढ़ जाएगा तो और भी खुशी हंसी और भी हो
0: ओके
1: जाएगा।
0: जी। जरूर कोशिश करेंगे हम कि समय को और बढ़ाया जा सके। तो अमल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके
1: ठीक
0: पसंद के
1: है, बहुत
0: गाना।
1: बहुत धन्यवाद, और भी दोस्त हमारे लाइन पर
0: जी जी जी
1: इंतजार
0: जी
1: में है,
0: ओके ओके
1: उस लोगों से
0: ओके
1: भी बात कीजिए सर, बहुत
0: जरूर
1: बहुत
0: जरूर।
1: धन्यवाद।
0: ओके थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, हम धेमाजी असम जुनाई मिसाकीरपुरा भीमोर पसंद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर। मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सुर्वे बात कर रही हूँ।
0: ओके जी, आकाशवाणी ईटानगर में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पहली बार कॉल कर रहे हैं हमें?
1: हाँ सर, मेरा पहली बार ही कॉल आया है।
0: ओके जी जी, तो हम सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू सर। मैं सुनती हूँ पर कार्यक्रम में फोन तो आज लगाए, बहुत प्रयास करने के बाद लगता है।
0: अच्छा जी जी जी, काफी लोग कॉल करते हैं ना, इसीलिए लाइन बिजी रहता है।
1: जी तो आज लगा तो मैं बहुत खुश हूँ।
0: जी हमें भी बहुत ही खुशी हो रही है, आप नए श्रोता हमसे जुड़े हैं आज। तनुश्री, अपने बारे में कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: सर मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अच्छा, क्या बात है जी।
1: और घर में रहती हूँ, पढ़ाई नहीं करते अभी, तो घर में शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। और कहीं परफॉर्म प्रदर्शन किया है शास्त्रीय संगीत?
1: नहीं सर, मैं शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ ना, तो मैं पढ़ाई देकर शास्त्रीय संगीत सीखती हूँ। अभी तो बाहर नहीं गई बजाने कहीं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी जी, कोई बात नहीं। अच्छी
1: पढ़ाई कम्प्लीट होगी ना, तब मैं बाहर बजाने जाऊँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, और आकाशवाणी में भी जरूर जाइएगा, आपको जरूर, हाँ जी, मौका जरूर दिया जाएगा। जी जी,
1: जी सर।
0: तो जानकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आज जो फरमाइश करोगी उसे गाकर करोगी?
1: हाँ सर, मैं आकाशवाणी पर जुड़ती हूँ ना, तो जिधर भी जुड़ती हूँ उधर गाकर ही फरमाइश।
0: अरे वाह वाह, जी जी जी, तो हो जाए फरमाइश।
1: हाँ सर। और सर मुझे फिल्म का नाम तो पता नहीं है, पर मैं गाने के बोल
0: जी
1: बता
0: जी जी
1: देती
0: हाँ
1: हूँ।
0: जी हाँ,
1: वे कमलिया वे कमलिया वे कमलिया नाना नरिया वे कमलिया।

0: कैसे गाना
1: क्या
0: है?
1: बात है, क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया गाया आपने। तनुश्री जी, आपकी
0: अरे सर,
1: जी
0: दोस्तों का नाम ले सकती हूँ
1: जी जी
0: मैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी
0: पहले तो सर आप है, क्योंकि अरे पहले पहली बार आपसे बात हो रही है, तो पहले आप
1: जी
0: है
1: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
0: और मेरे पापा को डेडिकेट रहेगा। भगवान सिंह परमार जी है, राकेश जी है शिमला से, गंगाधर सावनकर जी है, अविनाश जी है, रमेश प्रजापति जी है, प्रेम सिंह सिसरिया जी है, इन सब के साथ सर सुनूंगी।
1: ओके, तो तनुश्री जी इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए
0: जी
1: और
0: सर,
1: जी आगे बढ़ते रहिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: ओके, बाय बाय।

0: हेलो, फरमाइश
1: जी सर। जय श्री महाकाल।
0: जय श्री महाकाल, आकाशवाणी ईटानगर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
1: सर जी, शिवा लोहट एमपी विदिशा से बात कर रहा हूँ आपसे सर।
0: जी शिवा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: शुक्रिया सर, और आपसे बातचीत करके बहुत मन हल्का हो गया सर जी।
0: क्या बात है। जी जी, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप लोगों के कॉल आते हैं।
1: जी सर,
0: ऐसा लगता है जैसे कि हम दोनों साथ में बैठ के ही बातचीत कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सर, यही तो अपन रेडियो का यही फायदा रहता है सर
0: जी।
1: और एक दूसरे के विचार साझा हो जाते हैं, एक दूसरे की दिनचर्या साझा हो जाती है
0: जी।
1: तो बहुत अच्छा लगता है सर जी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और अपने जगह के बारे में जो जानकारी आप हमें देते हैं उससे हमारे श्रोताओं को भी काफी जानकारी मिलती है।
1: जी बिल्कुल
0: जी
1: सर।
0: हाँ जी, तो आपके वहाँ मौसम कैसा है आज?
1: सर जी देखिए, मध्य प्रदेश में मौसम जो है रूठा हुआ था।
0: अच्छा।
1: पर दो तीन दिन से मतलब किसान भाइयों के चेहरे पे खुशी आ गई है,
0: क्या बात
1: अच्छी
0: है,
1: बारिश हो रही है सर
0: ओके
1: जी।
0: जी जी जी, जानकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारे किसान भाई खुश तो हम भी खुश।
1: जी बिल्कुल सर।
0: जी जी जी,
1: और वो तो हमारे अन्नदाता है सर।
0: हाँ जी, वही तो, वो खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, सब पूरा देश खुश होगा।
1: जी बिल्कुल
0: जी,
1: सर।
0: हाँ जी, तो इसी खुशी के मौसम में कहिए आज कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे शिवाजी?
1: सर जी एक मूवी रहेगी, लेडीज गुना मूवी है, और उसमें एक गाना कुमार सानू जी की आवाज में है, हमने तुमको दिल ये दे दिया ये भी ना पूछा कौन हो तुम।
0: ओहो जी, बहुत ही बढ़िया गाना आपने चुना है
1: जी सर।
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: सर जी हमारे मित्र रहेंगे पूरन वर्मा जी, पुरुषोत्तम कुमार जी, और हमारे मित्र रहेंगे अविनाश जी, और हमारे मित्र रहेंगे शारदा प्रसाद जी, और रमेश पात्रे जी, रमेश प्रजापति जी, अमल जी, विमल जी, और हमारे सारी मित्र मंडली को डेडिकेट रहेगा ये गाना, और साथ ही साथ सर जी आपको।
0: जी, मुझे भी डेडिकेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिवाजी सुनते हैं आपके पसंद का गाना, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो, फरमाइश।
1: जय माता दी।
0: जय माता दी। आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंतमहल बुगला।
0: जी पूरन वर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसा है राजस्थान का मौसम?
1: बस सर, राजस्थान का मौसम बढ़िया है, आप सुनाओ।
0: जी हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया मौसम है, बारिश हो रही है।
1: जी यहाँ भी बस मौसम बना हुआ है, बारिश का बस शायद आ जाए।
0: अच्छा, इससे पहले हुआ बारिश?
1: हाँ थोड़ी बहुत हुई, इतनी खास कर नहीं हुई, पर ऐसे हुई, कांटा सड़का हुआ है सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ओके जी। तो ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी बारिश हो ताकि आप सबको गर्मी से राहत मिले और खासकर हमारे किसान भाइयों को इससे फायदा हो।
1: हाँ जी, हाँ
0: जी जी। तो पूरन वर्मा जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
1: एक गाने के बोले, मैं फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है।
0: जी कोई बात नहीं जी, गाने के बोल बोलिए।
1: उसमें गाने के बोले, तेरी सारी रिक्स के पुगा दूंगा तू, जो कह दे मैं ला दूंगा तू, हक दे मेरी मोटू राखू राजी राजी रे, ये गाना है।
0: ओके जी, किसी फिल्म का गाना है?
1: अब फिल्म का नाम तो मेरे को मालूम नहीं
0: है। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को पूरन वर्मा साहब?
1: जी सबसे पहले तो आप है,
0: धन्यवाद जी।
1: और मेरा दोस्त है अभी शिवा लोहार है, भगवान सिंह जी है, अभिनाथ जी है, रमेश पात्र है, अमल बिमल और शिमला से राकेश है, और जितने भी कॉलर आपके बातचीत कर चुके हैं और जो करेंगे आगे तक उनके लिए।
0: अच्छा, सभी को आप सुनाना चाहते हैं जी। तो पूरन वर्मा साहब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आप।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो प्रमेश, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद सर, मैं उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ।
0: जी उदयलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
1: मस्त हैं सर।
0: मस्त है, मौसम भी मस्त होगा।
1: मौसम भी मस्त है सर।
0: अच्छा, बारिश हो रही है या फिर होने वाली है?
1: बारिश नहीं हो रही है सर।
0: अच्छा,
1: अभी तक बारिश आई नहीं है, सूखा चल रहा है।
0: अभी तक आई ही नहीं?
1: आई नहीं,
0: बाप रे।
1: 15 दिन पहले आई थी दो बार।
0: अच्छा अच्छा, जी जी जी,
1: उसके बाद नहीं आई।
0: ओके। तो अभी मौसम तो गर्म होगा या फिर ठीक ही है?
1: गर्म तो नहीं है, बादल
0: अच्छा
1: छा रहे हैं, धूप
0: अच्छा
1: नहीं है,
0: ओके ओके ओके।
1: लेकिन एक उमस भरी गर्मी है।
0: अच्छा, बादल छाया
1: लगता
0: हुआ
1: है
0: है।
1: कि अभी अभी बरसात हो जाएगी, लेकिन हो नहीं रही है।
0: अच्छा
1: जी
0: जी, उम्मीद करते हैं जल्दी बारिश हो ताकि आप सबको राहत मिले गर्मी से।
1: आपकी
0: जी
1: दुआ से हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में सभी जगह बारिश हो।
0: जी, हमारे यहाँ तो बारिश हो ही रही है लगातार।
1: हाँ, आपके यहाँ तो हो रही है,
0: जी पहाड़ी इलाका है ना, इसीलिए हमेशा
1: पहाड़ी
0: बारिश।
1: इलाका है
0: जी
1: जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में तो बारिश चल रही है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही
1: और
0: जोरदार
1: कश्मीर
0: बारिश
1: में
0: हो
1: तो
0: रही।
1: अभी बहुत नुकसान हुआ सर।
0: हाँ जी हाँ जी, सही कहा आप।
1: जी
0: हमारे पड़ोसी राज्य असम में भी काफी नुकसान हुआ है बाढ़ के कारण।
1: हाँ, असम में भी हुआ सर।
0: जी तो ज्यादा बारिश हो तो भी मुश्किल और ना हो तो भी मुश्किल।
1: दोनों मुश्किल। हाँ जी सर,
0: चलिए, ये तो चलता रहेगा, धूप और बारिश।
1: क्या करें,
0: जी
1: प्रकृति के ऊपर
0: जी
1: अपना कोई नियंत्रण नहीं है
0: बिल्कुल सही कहा। कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सर। फिल्म है श्री 420,
0: श्री 420। ओके।
1: प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
0: जी
1: दूर है मंजिल, ऐसे
0: जी
1: कुछ बोल है।
0: जी बहुत ही प्यारा गीत है।
1: राज कपूर और नरगिस दत्त पर फिल्माया गया है,
0: जी
1: दोनों एक ही छाते में घूमते
0: हाँ
1: हैं बारिश
0: जी हाँ
1: में।
0: जी हाँ जी हाँ जी, देखा है मैंने भी।
1: जी आपने
0: जी
1: देखी होगी
0: जी जी
1: सर।
0: देखा है देखा है। जी जी बहुत ही
1: पुराने
0: प्यारा गीत है।
1: गाने बहुत अच्छे लगते हैं
0: हाँ
1: सर।
0: जी, वो तो बात सही है। तो उदयलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको आपके पसंद का गाना श्री 420 फिल्म से

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आकाशवाणी ईटानगर से आदरणीय वागरा साहब को करता हूँ सादर नमस्कार।
0: जी नमस्कार, हमारे ओर से भी आपको और प्यार भरा नमस्कार आपके सभी दोस्तों।
1: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे हैं?
0: जी शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही अच्छा हूँ, और आप सुनाइए, आप कैसे हो, आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मैं भी अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद है, बांके बिहारी कृपा है, और मौसम भी बहुत ही सुहाना है, खूबसूरत है। रिमझिम बारिश होती रहती है, आकाश में बादल छाए रहते हैं, और कभी कभी बरसात हो रही होती है। और जी गुरुवार को 11 बजे से बारिश जो शुरू हुई है, बारिश हो ही रही है, और आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है वर्षा के ऋतु में।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी खबर आपने दी हमें, आपके वहाँ झमाझम बारिश हो रही है, आप सभी को राहत मिली है धूप से, गर्मी से।
1: जी।
0: ओके, तो इसे खुशनुमा मौसम में कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: ऐसे खूबसूरत सुहाने मौसम में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है उसने कहा था।
0: उसने कहा था, ओके जी।
1: और गीत की बोल है, रिम झिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए, बहुत ही सुंदर प्यारा गीत है, आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी ईटानगर से।
0: जी जरूर सुनाएंगे, और किन श्रोताओं के साथ आप सुनना चाहेंगे इस प्यारे से गीत को?
1: सबसे पहले तो मैं अपने परम मित्र प्यारे प्यारे वागरा साहब को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और याद करना चाहता हूँ ब्रज रेडियो श्रोता मित्र अविनाश जी, आशुतोष जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव, और साथ में टेकर अग्रवाल, सतीश रघुवंशी जी हैं, राकेश कुमार हैं, पूरन वर्मा, पुष्कर नाथ जी, पुरुषोत्तम जी, और इन सभी दोस्तों के साथ साथ में चौधरी महेंद्र सिंह, राजू लवानिया, ये गीत समर्पित करता हूँ ईटानगर को, सुन रहे सभी श्रोताओं को।
0: जी तो शारदा प्रसाद जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी हृदय से धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो, शारदा नमस्कार।
0: नमस्कार।

हल्लो फरमाइश।

जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी ईटानगर करुण FM 103.1 MHz से। दोस्तों, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanagar. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
3: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज का। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम भूले बिसरे एक गीत। कुछ यादें धुंधली जरूर हो जाती हैं बॉस, पर उनकी मिठास वक्त के साथ और गहरी होती चली जाती हैं। घड़ी में बज चुके हैं 9, दिन भर का शोर अब थम चुका है और मौसम बन गया है थोड़ा पुराना थोड़ा शायराना। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे साजिद, हाजिर हूं लेकर आपका सबसे पसंदीदा सेगमेंट भूले बिसरे गीत ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। दोस्तों, रात के 9 बजे का ये वक्त भी इतना खास होता है। पहाड़ों पर ठंडी हवा चल रही है, लाइट में थीम है और हाथ में गर्म चाय की प्याली या कॉफी। ऐसे में अगर आप रेडियो पर 60s और 80s का वो सुनहरे नगमे बज जाए तो दिल सीधा बचपन या जवानी के उन हसीन दिनों में लौट जाता है। किशोरदा की मिठास, रफी साहब की रूहानी आवाज और लता दीदी की वो जादुई तान। वो जमाना ही अलग था जब गाने सिर्फ सुने नहीं महसूस किए जाते थे।

दोस्तों, इनका तीर अगर चल जाए ना बॉस, तो अच्छे अच्छों के दिल घायल हो जाते हैं। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे साचेद, हाजिर हूं रेट्रो यादों का पिटारा खोलकर। आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर। और भूले बिसरे गीत सेगमेंट में अब वक्त हो गया है एक ऐसे बेहद ही खूबसूरत और सुनहरे नगमे का। दोस्तों, 1965 में आई फिल्म आरजू का ये गाना जब भी बजता है ना, तो ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर सा गया हो। राजेंद्र कुमार साहब का वो डैपर लुक, साधना जी का वो आइकॉनिक हेयर स्टाइल और अनबीटेबल अदाएं हैं, और पर्दे पर उनकी ये केमिस्ट्री, शंकर जयकिशन जी का कमाल का कंपोजिशन, हसरत जयपुरी साहब के लिखे दिलकश बोल और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में जो वो आशिकाना मिठास है, छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा, इस गाने में जो रोमांस का नशा है वो आज के टेक्नो बीट्स में कहां है।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। दोस्तों, 1965 के ब्लॉकबस्टर फिल्म आरजू के गाने कितने कमाल के थे ना। साधना जी का वो मासूमियत और राजेंद्र साहब का वो क्लासिक अंदाज, और जब मोहम्मद रफी साहब अपनी आवाज में गाते हैं ए नरगिसे मस्ताना, बस इतनी ही शिकायत है तो बॉस दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाता है। हसरत जयपुरी साहब ने जो बोल लिखे हैं और शंकर जयकिशन जी ने जो धुन बनाई है, मतलब तारीफ के लिए लफ्ज कम पड़ जाए। ये गाना तारीफ करने का वो तरीका है जो आजकल के टेक्स्ट और मैसेज में कभी नहीं मिल सकता। दोस्तों,

अजी कहाँ जा रहे हो? थोड़ा तो सही, थोड़ा नखरा, थोड़ी नाराजगी, पर प्यार तो बेहद है बॉस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे साजिद। एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी रात को थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 MHz पे, हमारे रेट्रो स्पेशल सेगमेंट भूले बिसरे गीत में। दोस्तों, 1965 की कल्ट फिल्म आरजू के लिए कहने पर्दे पर साधना जी का वो अदाएं और राजेंद्र कुमार साहब की वो दीवानापन, मतलब कमाल। लता मंगेशकर दीदी की आवाज में जब ये गाना बजता है ना, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा, तो दिल खुश हो जाता है हसरत जयपुरी साहब के लिखे बोल और शंकर जयकिशन की मैजिक। ये गाना हमें सिखाता है कि जब कोई अपना रूठ जाए तो उसे गुस्से से नहीं, बल्कि धीरे धीरे प्यार से और थोड़े से हक से मनाया जाए। तो अगर आपके पार्टनर या किसी दोस्त ने भी मुंह बना रखा है, तो ईटानगर की इस ठंडी हसीन रात में ये दो लाइन उन्हें सुनाए साजिद की तरफ से। जहां जाओगे हमें ही पाओगे, दिल की ये दीवारों दर हमारे ही नाम से सोएंगे जाओगे। तो चलिए सारे गिले शिकवे भूलिए और थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए और सुनिए ये जादुई गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार हूं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को आज मंजूरी दे दी। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने कल एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठकंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: इस बीच सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू की गई है। एजेंसी ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधि मंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज लगातार 5वें दिन भी नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा की कार्यवाही दूसरे स्थगन के बाद फिर शुरू होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। विधेयक पेश होने के बाद विपक्षी दलों ने नीट मुद्दे पर फिर से नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामा जारी रहने पर उपसभापति हरिवंश ने सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार पहले दिन से ही नीट पेपर लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटकल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दे दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच संपर्क बेहतर होगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सूचित किया है कि मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार अब खोल दिए गए हैं। डीएमआरसी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से इन मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
2: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक अपनी पवित्र वापसी

0: rainfall and Santalpur witnessing nearly 9 inches. Our correspondent reports Chief Minister Bhupendra Patel and Deputy Chief Minister Harsh Sanghvi are continuously monitoring the flood situation in South Gujarat. In shooting, India's Sanyam won the silver medal in the women's 10-meter air pistol event at the ISSF World Cup in Hangzhou, China, opening the country's medal account at the tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर मुख्य समाचार भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर आपत्ति व्यक्त की सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान की कश्मीर संबंधी टिप्पणियों को खारिज किया पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सीमित होते दायरे की चेतावनी दी कहा मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया अमेरिका ने चीन यूरोपीय संघ ब्रिटेन और 57 अन्य व्यापारिक साझेदारों से आयात पर नए टैरिफ लगाए स्पेन ने मैड्रिड क्षेत्र में भीषण आग के बाद राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और भारत की संयम ने निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता अब समाचार विस्तार से भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर आपत्ति व्यक्त की भारत ने संयुक्त राष्ट्र के प्रति निराशा व्यक्त की है क्योंकि पाकिस्तान विशेष रूप से कश्मीर के उस हिस्से में जहां पाकिस्तान का कब्जा है दमनकारी गतिविधियों को नजरअंदाज कर रहा है भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने अधिकृत कश्मीर और पूरे देश में इस्लामाबाद द्वारा मानवाधिकारों के दमन और स्वतंत्रता के हनन का उल्लेख किया सुरक्षा परिषद की बहस में भारत ने पाकिस्तान की कश्मीर संबंधी टिप्पणियों को खारिज किया इस्लामाबाद द्वारा कश्मीर मुद्दे को उठाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री हरीश ने कहा कि दुनिया पाकिस्तान में कश्मीरियों के बुनियादी अधिकारों अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता के निरंतर दमन और मूलभूत स्वतंत्रता के हनन को देख रही है विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि सरकार अपने निकटवर्ती क्षेत्रों में हो रहे सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है जिनका उसके राष्ट्रीय हितों पर असर पड़ सकता है और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा और उसे मजबूत करने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं
2: आज लोकसभा में श्री सिंह ने कहा कि सरकार ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय मंचों पर सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर विशेष बल दिया है उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रासंगिक मंचों पर सीमा पार आतंकवाद के प्रभाव के बारे में लगातार बात कर रहा है विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बारे में इस संबंध में मंत्रालय ने 31 सहयोगी देशों के साथ आतंकरोधी संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की है उन्होंने बताया कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद 7 संसदीय प्रतिनिधिमंडलों ने सीमा पार आतंकवाद के खतरे पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए दुनिया भर के 33 देशों का दौरा किया विश्व दर्पण के लिए जया भारती
1: इस बीच भारत ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी
3: जहाँ तक इंडस वाटर ट्रीटी की बात है सिंधु जल संधि की समझौते की बात है इस पर हमारा पक्ष साफ है और हम लोगों ने समय समय पर आपको याद भी दिलाया है कि भारत का ये मानना है कि ये सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगा जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देना बंद नहीं करेगा
1: श्री जायसवाल ने भारत द्वारा जानबूझकर पड़ोसी देश में बाढ़ लाने की पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया है पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है आयोग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए स्थान लगातार सिकुड़ता जा रहा है। आयोग की यह टिप्पणी वरिष्ठ पत्रकार मुन्नीजे जहांगीर के लंबे समय से चल रहे टेलीविजन कार्यक्रम

0: स्पॉटलाइट के हाल ही में प्रसारण बंद किए जाने के बाद आई हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने आज स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। संसद अध्यक्ष हफीजुद्दीन अहमद ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। नए राष्ट्रपति के चुनाव तक हफीजुद्दीन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन अप्रैल 2023 में राष्ट्रपति बने थे और अपने 5 वर्षीय कार्यकाल की समाप्ति से 2 वर्ष पहले ही त्यागपत्र सौंप दिया। अमेरिका ने चीन, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन सहित 60 व्यापारिक साझेदारों से आयात पर 12.5% तक का नया टैरिफ लगाया है। लगभग सभी अमेरिकी आयातों पर लागू यह टैरिफ आज समाप्त हुए इसी तरह के शुल्क की जगह लेंगे। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर लगाए गए कई टैरिफ अवैध रूप से लागू किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक और निवेश संबंधों को विस्तार देने का आह्वान किया है। बुखारेस्ट में भारत रोमानिया व्यापार मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों में वाणिज्यिक सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। भारत ने आज नई दिल्ली में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर तीसरी ब्रिक्स मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की। बैठक का समापन आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ब्रिक्स संयुक्त वक्तव्य को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ हुआ। सदस्य देशों ने 2025-2028 तक ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य योजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने और लचीले समाज के निर्माण के लिए सहयोग को गहरा करने की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्पेन सरकार ने आज राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी है। कई स्थानों पर लगी भीषण आग के कारण मध्य मैड्रिड क्षेत्र में लगभग 10,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैड्रिड के क्षेत्रीय सरकार ने बताया कि भीषण गर्मी के दौरान जंगल की आग अनियंत्रित हो गई। इस वर्ष स्पेन में 1,00,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि जल चुकी है। आज ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की विश्व प्रसिद्ध बहुधा यात्रा अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाई गई। एक रिपोर्ट।
1: आज पुरी का पवित्र शहर गहरी भक्ति भावना से सरोवर है, जब लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा देखी। पारंपरिक रस्म में पूरे होने के बाद भाई बहन की ये मूर्तियां श्री गुंडीचा मंदिर से श्री जगन्नाथ मंदिर तक अपनी पवित्र वापसी यात्रा पर निकली। इस दौरान भजन कीर्तन और पारंपरिक वाद्य यंत्र की थाप गूंज रही थी। सालाना रथ यात्रा का समापन नीलाद्री विजय रस्म के साथ होगा, जिसमें मूर्तियों को औपचारिक रूप से श्री जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में वापस लाया जाएगा और इस तरह ये भव्य आध्यात्मिक उत्सव सम्पन्न होगा। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: चीन के हांगझोउ में निशानेबाजी विश्व कप में भारत के संयम ने आज महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक जीता। संयम ने क्वालिफिकेशन राउंड में 579 के स्कोर के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने कुल 243.4 का स्कोर बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया और स्वर्ण पदक जीतने से सिर्फ 0.2 पॉइंट से चूक गई। चीन की याओ कियानुक सुन 243.6 पॉइंट के साथ पहले स्थान पर रही। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों के दूसरे दिन आज पुरुषों की 50 मीटर ब्रेक स्ट्रोक तैराकी में भारत के श्रीहरि नटराज ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। उन्होंने हीट में 25.52 सेकंड का समय लिया और 16 तैराकों में 14वें नंबर पर हैं। सेमीफाइनल आज देर रात होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हड़ताल पर संयुक्त राष्ट्र की चुप्पी पर आपत्ति व्यक्त की। सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान की कश्मीर संबंधित टिप्पणियों को खारिज किया। पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग ने देश में स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए सीमित होते दायरे की चेतावनी दी, कहा मीडिया की स्वतंत्रता खतरे में।